नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

0: भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में, इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्प्टन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दे। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

0: साढ़े 6 बजे देहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा। अज के इस प्रोग्राम दे विच कम दियां गल्लां दे नाल नाल झोने ते कीड़े ते रोकथाम इस विषय ते डॉक्टर के एस सूरी की वार्ता सुनोगे। खेतीबाड़ी संबंधित गल्लां बातां होणगियां। मनोरंजन लई गीत संगीत भी पेश किया जाएगा। शाम 7:45 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम वगदे पाणी तहत भुपिंदर सिंह मान की कहानी बंद दरवाजा। रात 8 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम तुहाडी चिट्ठी मिली। रात 9:15 साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे स्पॉटलाइट। 9:30 नैशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स ते रात 10 बजे रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा प्रसारित किया जाएगा। ये साढ़े अज के इस मीटर तो प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा। DTS की आकाशवाणी पंजाब सेवा ते बाद दोपहर 3:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11 बजे समा रहेगा प्रोग्राम सुगात दा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण सुनदे आं
1: AM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रिचा झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैण्डदेशस्य स्वीयाम् ऐतिहासिकीं द्विदिवसीययात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगतचत्वारिंशद्वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैण्डयात्रा आसीत्, या उभयदेशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पदप्रबन्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पञ्च ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमन्त्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम् नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि

0: समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै 9 अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 7 बजे ने पेशान हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड विच भारती भाईचारा दोवां देशां विचकार मजबूत हो रहे संबंधां दा एक महत्वपूर्ण थम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि लोकराज विच विचारां दा मतभेद होना सुभाविक है, पर संविधान अते लोक भलाई प्रति वचनबद्धता सब तो उपर रहनी चाहिए। देश ने 2 लाख तो वध सुखम खुराक प्रोसैसिंग उद्यमां नूं करजे मंजूर करन दा मील पत्थर पार कर लिया है। वियतनाम विच भारतीय सैलानियों नूं ले जा रही एक किश्ती दे पलटन कारण 15 लोकां दे मारे जाण दा खदशा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम विच स्वदेशी तौर ते विकसित स्टेल्थ फ्रीगेट INS महेंद्रगिरी नूं समुद्री फौज विच शामिल कीता। पंजाब च जनतक ट्रांसपोर्ट सिलसिले च अति आधुनिक कैमरियां ते GPS सिस्टम नाल लैस 696 नवीं बसां शामिल होणगियां। पंजाब भर विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR तहत वोटरां दी सहूलत लई सारे वोट केंद्रां ते अज विशेष कैंप लाए जा रहे ने। पंजाब विच नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशियां विरुद्ध नूं जमीनी पद्धर ते होर मजबूत करदिआं सूबा सरकार ने पिंडां दा हाल एक्शन प्लान लागू करना शुरू कर दिता है। इस दा उद्देश नशियां विरुद्ध लड़ाई विच लोकां नूं होर सरगर्मी नाल शामिल करना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनां दौरान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते हिमाचल प्रदेश समेत उत्तरी भारत दे हिस्सियां च भारी बारिश होण दी पेशनगोई कीती है। भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्पेन दे मैड्रिड विच तीर अंदाजी विश्व कप विच चांदी दा तमगा जितया है। महिला व्यक्तिगत कंपाउंड मुकाबले विच प्रीतिका प्रदीप ने कांसी दा तमगा जितया है। ए सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है जी प्रोग्राम सोनी सवेर। नमस्कार, सत श्री अकाल जी, स्वागत करदे आं प्रोग्राम सोनी सवेर विच। बिल्कुल जी, चढ़दी कला च रो, मुस्कुराउंदे रो ते उम्मीदां नाल भरी इस खूबसूरत सवेर विच तुहाडे सारिआं दा एक वारी फिर तो स्वागत है। तुसीं सुन रहे हो अपना प्रोग्राम सोनी सवेर। रब करे अज दा दिन तुहाडी जिंदगी विच नवीं रोशनी लैके आवे। चलो जी, शुरुआत करदे आं असीं अज दे दिन दी बाबा बुल्ले शाह जी दे एक बहुत ही प्यारे कलाम दे नाल। बाबा बुल्ले शाह जी फरमाउंदे ने, उठ चल मना जे चलना ई, उत्थे बइए जिथे सारे अन्ने होण, ना कोई तेरी जात पछाणे ना कोई तेनू मन्ने होण। दोस्तों, इहदा मतलब है वी दुनिया की परवाह किए बिना लोगों के तानिया तो दूर होके बस अपने काम ते ध्यान दिओ। जदों तुसी मेहनत करदे हो ना तां दुनिया की कहिंदी है वह मायने नहीं रखता। बस तुसी मेहनत करदे रहना, अगे वधना है ते अपनी मंजिल

बिल्कुल जी, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया। एवें तो नहीं किसी ने कहा भी डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। बिल्कुल, जदों तुसी पहली लड़ाई अपने आप नाल जीत ली ना, जदों तुसी ये सोचना बंद कर देता भी लोग तुहाड़े बारे की सोच रहे ने, उदों देखियो मंजिलां जिहड़ियां ने ना उहनां तक पहुँचना बहुत ही आसान हो जाएगा। रस्ते तुहानूं अपने आप सुखाले लगन लग पैणगे, है ना। बस चलना जिहड़ा है वह सच की राह ते चलना है। लो जी, भी गलबात असी कर रहे हैं भी तुसी अपनी हिम्मत कदे नहीं हारनी, पर की तुहानू ये पता है भी दुनिया दे विच सब तो तेजी नाल वधन वाला पौधा केड़ा है? नहीं जी, ते दस दिंदे आ, कोई गल नहीं जी, ओ है बांस दा पौधा। बिल्कुल जी, जी हाँ, बांस दा पौधा। बांस दियां कुछ किस्मां इक्को दिन विच यानी 24 घंटियां विच तकरीबन 3 फुट तक वध सकदियां ने, है ना। देखो है ना हैरानी वाली गल भी 3 फुट तक कुछ किस्मां जिहड़ियां ने ओह 24 घंटियां विच ही वध जांदियां ने। तो इसलिए जे कदे लगे ना भी तुहानू कि तुहाड़ी तरक्की हौली हौली हो रही है तो निराश ना होवो। देखो कुदरत दे रंग, कुदरत हर चीज़ नू अपने सही समय ते वधाउंदी है, है ना। कहिंदे भी कोई राजा सी, उन्हें अपने जिहड़े वजीर ने उन्हां नू कहा भी मैनू कुछ इदा की पंक्ति, कुछ इदा की लाइन लिख के दौ भी जिन्हों मैं खुशी च पढ़ा तो मैनू दुख होने लग पवे, तो मैं दुख च पढ़ा तो मैनू बहुत खुशी होवे। उन्होंने राजे दे सिंघासन दे सामने बिल्कुल दीवार ते लिखवा दिता भी यह समा बदल जाएगा। देखिया जदों दुख आवे और असी ये सोचिए भी यह समा बदल जाएगा तो फिर किन्ना चंगा लगता है, है ना। चंगा लगन लिए असी तुहानू एक गाना भी जिहड़ा सुनाना। गाना है जी पलक मुचल ते अरुण देव यादव की आवाज़ दे विच, इलाही। मीडियम वेव 343.6 मीटर तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सोनी सवेर विच।

तंदुरुस्ती होवे सब दे पास, इज्जत अणक ते तंदुरुस्ती होवे सब दे पास, मेहनत दा मुल मिल जावे सबनू कदे न टुटे आस। दातिया एयो मेरी अरदास, बस एयो मेरी अरदास। बिल्कुल जी, यही उम्मीद करते हैं बई हर एक बंदे दी जिहड़ी इज्जत है, मेहनत काम कर रहे ने, वो इंज ही चलता रहे। मेहनत दा मुल हर एक बंदे नू मिलता रहे और उम्मीदां जिहड़ियां ने ना वो कदे ना टुटन। अज संयुक्त राष्ट्र वालों ऐलानिया गया जी इंटरनेशनल डे ऑफ होप, है ना, अंतरराष्ट्रीय उम्मीद दिवस। जे गल करिए जी उम्मीद दी, है ना, उम्मीद आस, असी किन्नी वारी गल करते हैं भी मैनू उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा उम्मीद रखो, उम्मीद एक ताकत है। तो जे इनिया गल्ला असी उम्मीद बारे करते हैं तो मैनू लगता है कि दिलों के विच उम्मीद रखनी भी चाहिए। कई बार इंज होंदा है भाई असी घबरा जाते हैं, कुछ माड़ा जिहा गड़बड़ हो जाए, कुछ माड़ा जिहा गलत हो जाए, तो असी उम्मीद का जिहड़ा दामन है ना वो छड़ दिंदे हैं। उम्मीद का दामन जी बिल्कुल नहीं छड़ना।

कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा उम्मीद रखो, उम्मीद एक ताकत है। ते जे इनिया गल्लां असीं उम्मीद बारे करदे आ ते मैनूं लगदा है कि दिलां दे विच उम्मीद रखनी भी चाहीदी है। कई बार इंज हुंदा है बई असीं घबरा जांदे आ, कुछ माड़ा जिहा गड़बड़ हो जाए, कुछ माड़ा जिहा गलत हो जाए, तां असीं उम्मीद दा जिहड़ा दामन है ना उह छड्ड दिंदे आ। उम्मीद दा दामन जी बिल्कुल नहीं छड्डना है ना, क्योंकि बुल्ले शाह जी ने भी उम्मीद ते सबर बारे बहुत ही सोहना लिखिया है। वह कहिंदे ने, रात लम्मी है ते रस्ता दूर है, पर दिल विच उम्मीद दा होना जरूर है। है ना, उम्मीद रहेगी तां औखे पहाड़ जिहड़े आ ना उह वी चढ़ने सौखे है। इस करके उम्मीद दा दामन कदे भी नहीं छड़ना। उम्मीद एक अजिही ताकत है जो डुबदे हुए नूं भी किनारा दिखा देंदी है। ते अज दे दिन अपने दिल विच उम्मीद दा दीवा जरूर जगाओ ते एंजॉय करो इस गीत नूं।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15

0: भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक

0: करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक

0: प्लिमाउ तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर रही इस अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास
2: लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्प्टन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
2: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने आईएनएस महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ एआई से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते

0: शहरों पर विश्लेषण दिया है। हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं। इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब

0: and Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड का तीन देशों का दौरा सफल रहा है। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन नाल व्यापक गलबात तो बाद भारत लई रवाना। वियतनाम सरकार ने किश्ती हादसे की जांच के हुक्म दिते ने। इस हादसे में 15 भारतीय सैलानियों की मौत हो गई सी। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला पड़ा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, सैमीकंडक्टर, इलैक्ट्रॉनिक्स निर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक देश के उत्तरी ते पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की पेशीनगोई की है। इंग्लैंड नॉर्वे को 2-1 नाल हरा के फीफा फुटबॉल विश्व कप के सैमीफाइनल में पहुंच गया। टेनिस में चेक गणराज की लिंडा नेसकोवा ने हमवतन कैरोलिना मुकोवा को हरा के अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड का अपना दौरा मुकम्मल करन तो बाद देश लई रवाना हो गए ने। इस दौरे दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन नाल व्यापक गलबात की। भारत ते न्यूजीलैंड ने दुवले संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली तक वधाया है। रक्षा, सैर सपाटे, खेडां, आफत प्रबंधन, डेयरी ते पशु पालन समेत कई मुख्य खेत्रां विच समझौते ते दस्तखत वी कीते गए। ऑकलैंड विच भारतीय भाईचारक समूह विच भारतीय मूल के 10,000 तों वध लोक शामिल होए। एक अठवां संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि भारत ते न्यूजीलैंड का भविख आपस में जुड़िया होया है। उन्होंने कहा कि दुवाला व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सफर को तेज़ करेगा। दौरे की समाप्ति से प्रधानमंत्री लक्सन ने हवाई अड्डे से श्री मोदी को निजी तौर पर विदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस सफल दौरे दौरान मिले असाधारण प्यार लिए प्रधानमंत्री लक्सन न्यूजीलैंड सरकार और लोगों का धन्यवाद किया। विदेश मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए हैं। इसने व्यापार, तकनोलॉजी, सुरक्षा, सिक्ख्या, नवीनता और लोगों तो लोगों के संपर्क वर्गे कई खेत्रों में सहयोग को उत्साहित किया।

0: मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल। वियतनाम सरकार ने किश्ती हादसे की जांच दे हुकम दिते ने। इस हादसे विच 15 भारतीय सैलानियों की मौत हो गई सी। इलैक्ट्रॉनिक्स अते सूचना टैक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला पड़ा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, सेमीकंडक्टर, इलैक्ट्रॉनिक्स निर्माण अते उन्नत बुनियादी ढांचे ते आधारित होवेगा। पंजाब च जनतक ट्रांसपोर्ट सिलसिले च अति आधुनिक कैमरियां ते जीपीएस सिस्टम नाल लैस 696 नवीं बसां शामिल होणगियां। पंजाब भर विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR तहत वोटरां दी सहूलत लई सारे वोट केंद्रां ते अज विश्व कैंप लाए जा रहे ने। पंजाब विच नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशियां विरुद्ध नूं जमीनी पद्धर ते होर मजबूत करदिआं सूबा सरकार ने पिंडां दा हाल एक्शन प्लान लागू करना शुरू कर दिता है। इसका उद्देश नशियां विरुद्ध लड़ाई विच लोकां नूं होर सरगर्मी नाल शामिल करना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पंजाब समेत देश दे उत्तरी अते पूर्वी हिस्सों च भारी बारिश की पेशिनगोई की है। इंग्लैंड नॉर्वे नूं 2-1 नाल हरा के फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप के सैमीफाइनल विच पहुंच गया है। टेनिस विच चेक गणराज की लिंडा नोस्कोवा ने हम वतन कैरोलीना मुकोवा नूं हरा के अपना पहला विमल्डन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इंग्लैंड ने बीती रात साउथहैम्पटन विच 5वें अते आखिरी 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच दे विच भारत नूं 56 दौड़ां नाल हरा के लड़ी 4-0 नाल जीत लई है। इह सन हुण तक दीआं मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां।
1: की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लैके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत

0: सारे प्रोडक्शन हाउसेस प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक-वक प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मांग कर रहे हैं। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
2: हेलो,
3: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
4: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
5: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। पेशे शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना, जिस विच तुसी सुनोगे विदुषी किशोरी अमोनकर दा राग अलैया बिलावल च गायन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच को भी संबोधित किया और दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी। श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान में भी शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत

0: आज 35 करोड़ पौधे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले खराब, सड़े गले, दूषित और अन्य असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूकोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री

0: शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में दो दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। यह हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ थे।
2: हेलो,
3: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
4: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम बाल जगत।

0: जय हिंद।
1: रब ने तैनू मौके दित्ते दित्ते कई हजार, कुदरत नू देख जीवना सिख ते सब ना कर तू प्यार। ते लो जी जहना नू रोशन करदा खुशियां दे पैगाम वंडदा प्यारे बच्चियां दा मनपसंद प्रोग्राम उना दे रेडियो सेट उपर लैके हाजिर हो चुके ने सुखदीप और गुरप्रीत
2: जी। बिल्कुल, प्रोग्राम बाल जगत दे विच सारयां दा बहुत बहुत स्वागत करदे आं। खास करके जदों असीं गल करदे हां जहना नूं रोशन करदे इस प्रोग्राम दी, ते जानकारी ढेर सारी होएगी, मनोरंजन वी होएगा, गल्लां बातां दा सिलसिला तुहाडे नाल इसे तरीके जारी रहेगा।
1: ते लो प्यारे बच्चियो, सब तों पहलां गल करदे आं मौसम दी। और गुरप्रीत, इन्हां दिनां दे विच खास करके बरसातां दा जिहड़ा मौसम है ना, कई कई वारी ते बड़ा सुहावना लगदा है। इदां लगदा है कि जिवें असीं पहाड़ां दे विच आ गए आं, ठंडी ठंडी हवा चलदी है और इन्ना क स्वाद आउंदा है बाहर सैर करन दा सवेरे शाम रात, के मज़ा ही आ जांदा है। पर जदों थोड़ी जी धुप चमकदी है बरसात दे दिनां दे विच, ते फिर लगदा है कि रब्बा फिर तो मीह बरसा, ठंडियां ठंडियां हवावां चला। और देखो जी, इस मौसम की यही खूबसूरत है, बरसात के दिनों के बहुत सारा प्यारे बच्चों मॉइस्चर वध जाता है, पसीना भी खूब आता है और चिपचिपी जी गर्मी हो जाती है। और ये सिर्फ साढ़े लिए नहीं होंगी, सगों पशु पंछी

0: प्यारे बच्चों का मनपसंद प्रोग्राम चलता पाया जी बाल जगत और बाल जगत दे वेड़े दे विच कमाल करते पे ने अपनी खूबसूरत गायकी दे नाल अपनी खूबसूरत पेशकारी दे नाल प्यारे बच्चे और प्यारे बच्चों हर एतवार तुहाडियां भी हाजरियां बाल जगत दे वेड़े दे विच लग सकदियां ने और पूरे पंजाब दे विच तुहाडी आवाज़ जाएगी आकाशवाणी की आवाज़ बन के। सो प्यारे बच्चों तुसीं भी संगना नहीं है, शर्माउणा नहीं है, अपनी खूबसूरत जी प्यारी जी आवाज़ दे विच कोई गीत, कोई कविता, कोई कहानी सानू रिकॉर्ड करके भेज देनी है और असी उन्हूं अपने बाल जगत का श्रृंगार बना लेना है। सो प्यारे बच्चो नन्नी कलम का सिलसिला चलता पिया है, तो गुरप्रीत जी अगला केड़ा बाल कलाकार है?
1: जी बिल्कुल, जदों असीं बाल कलाकारां दी गल करदे ते वख-वख वनगियां खास करके बच्चे जिहड़े ने प्रोग्राम बाल जगत दे विच नन्नी कलम तों दे जरिए साडे सारिआं दे अग्गे पेश करदे ने और इन्हां सारिआं वनगियां दी जदों असीं गल करदे आं कवितावां दी, कहानियां दी और नाल दी नाल खास करके म्यूजिकल आइटम्स दी ते शब्द तों असीं शुरुआत कीती सी, हुण असीं रुक करदे आं जी प्रोग्राम बाल जगत दे विच नन्नी कलम तों दे सिलसिले दे तहत अगली परफॉर्मेंस दे वल। आओ सारे रल मिल के सुणदे आं।
2: सत श्री अकाल, मेरा नाम अक्षता है अते आज मैं डॉक्टर प्रशांत भट्ट दी लिखी एक कविता तुहाडे सामने पेश करन जा रही हाँ, जिसका शीर्षक है मैनू माण पंजाबी होण दा। जो राह गुरुआ ने पाई है हरी नलवे ते भगत हुरा ने, जिथे चलदे आ शहीदी पाई है, बन के मुरीद अज जी कर दे उन्हां राहां विच खलौण दा, मैनू माण पंजाबी होण दा। सेवा करा ते नाम जपा सरबत दे भले लई जिउंदे जी, वंड छकां ते किरत करा मनोरथ मेरी गुरु दा पाणा, सिव्यां तक निभाउण दा मैनू माण पंजाबी होण दा। जिने कौम ली साहबजादे वारे जुल्म दी अत नू रोकण दे लई, जिने सिंह बणा ते पंज प्यारे, अज फेर समा है अणख दी खातर उस गुरु दा सिंह कहाउण दा, मैनू माण पंजाबी होण दा, मैनू माण पंजाबी होण दा।
0: वाकई जी प्यारे बच्चे सानू पंजाबी होण ते माण ते जरूर होना चाहिदा है, पर देखो प्यारे बच्चे ये जिहड़ा माण और घमंड है ना इहदे विच बहुत हल्का जिहा फर्क है और बहुत वारी ना गुरप्रीत जिहड़े बच्चे ने वह फिर अपनी ईगो किसी चीज़ की बना लेंगे ने ना, तो वह फिर जिंदगी दे विच प्यारे बच्चे बहुत तंग करती है। सो माण होना चाहिए सानू अपनियां चीज़ां दे उत्ते, सानू अपने विरसे ते सभ्याचार दे उत्ते, अपनियां खूबियां ते, पर ये माण प्यारे बच्चे घमंड का रूप ना धारण कर लवे, क्योंकि घमंड जिहड़ा है वह फिर साडी डाउनफॉल का भी कारण बन जाता है। सो प्यारे बच्चों ने अपनी इस खूबी नू समझना है और डाउन टू अर्थ हो के चलना है, निमाणे हो के चलना है और उहदे नाल प्यारे बच्चे तुसी खुशियां वंडदे हो, अपनी जिंदगी नू खूबसूरत बनाउंदे हो और देखो जी बाल जगत नू भी तुसी प्यारे बच्चे खूबसूरत बनाउंदे हो अपनी आवाज़ दे नाल, अपनी कलाकारी दे नाल, अपने हुनर दे नाल और सिलसिला चलदा पिया जी बाल जगत दे विच नन्नी कलम दा।
1: जी बिल्कुल, नन्नी कलम दे जरिए हमेशा से थानू कहने आ कि तुसी हमेशा ते हमेशा सतर्क रहना, अवेयरनेस थोड़े कोल होनी चाहिए है, जिहड़ी ये जागरूकता है ये तुसी अपने तक ही नहीं रखनी दूसरों तक भी पुजदा करनी है। जिहड़े भी दिन हफ्ते असी खास करके मना रहे हुंदे उन्हां विषयां दे उपर तुसी अपनियां कोई भी कविता कहानियां जिहड़ियां ने खास करके वो रिकॉर्ड करके सानू भेज सकदे हो। सो जिवें बच्चे हाजरी लगवा रहे ने तुहानू सुन के जरूर ते जरूर वधिया लग रहा होएगा, सो तुसी भी अपनी हाजरी जरूर इस प्रोग्राम दे विच लगा सकदे हो। तुहाडा अपना पसंदीदा प्रोग्राम है जी बाल जगत, बाल जगत दे विच वेला हो गया जी अगली परफॉर्मेंस दे वल रुख करन दा। सुनन्नी कलम तो दे जरिए सुनदे आ अगली परफॉर्मेंस।

0: जहाँ थकी हुई प्रयासरत वाहें त्रुटिहीनता की तलाश में हैं, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा है, जो सुनसान रतीले मृत आदत के वीराने में अपना रास्ता खो नहीं चुकी है, जहाँ मन हमेशा व्यापक होते विचार और सक्रियता में तुम्हारे जरिए आगे चलता है और आज़ादी के स्वर्ग में पहुँच जाता है। ओ पिता परमेश्वर, मेरे देश को जागृत बनाओ। धन्यवाद।
1: लो जी प्यारे बच्चों का मनपसंद प्रोग्राम चलता पे बाल जगत, और बाल जगत के वेड़े दे विच बाल कलाकार अपनी खूबसूरत आवाज़ दे नाल हाजरियां लगवाते पे ने, और प्यारे बच्चे जिहड़े सानू घर बैठे सुनते पे ने वह भी इस प्रोग्राम दे विच इसे तरह अपनी आवाज़ दे नाल हाजरियां लगवा सकते हैं। करना की है कि साढ़े वट्सअप नंबर के उत्ते अपनी खूबसूरत वाली रिकॉर्डिंग करके भेजनिया ने, और असी उन्होंने इसे तरह प्रोग्राम दे विच पेश करांगे। और प्यारे बच्चे, रिकॉर्डिंग करन दे समय इस गल दा ध्यान रखना कि आस पास दी कोई आवाज़ एक्स्ट्रा ना रिकॉर्ड होवे, तुहाडी खूबसूरत परफॉर्मेंस होवे, और उहदे विच तुसी कोशिश करनी है कि जिहड़ा फाइनल वाला टेक है, जिहड़ा बहुत प्रैक्टिस करके कीता है तुसी, ओह वाला सानू हाई क्वालिटी दे विच रिकॉर्ड करके भेज दिओ।
2: जी बिल्कुल, प्रोग्राम चल रहा है जी बाल जगत, तुहाडा अपना मनपसंद प्रोग्राम, खास करके इस दे विच बच्चियां दीआं हाजरियां लग रही ने, बच्चे वख वख तरह दीआं परफॉर्मेंसिस तुहानू सारिआं नू सुना रहे ने, अपने आवाज़ दे जरिए आवाम तक पहुँचा रहे ने अपनी आवाज़ नू बहुत वधिया तरीके दे नाल। सो हुण असीं रुक करदे हां जी प्रोग्राम बाल जगत दे विच नन्ही कलम तों दे जरिए अगली परफॉर्मेंस दे वल, जिहड़ी कि फिर तों बाकमाल होण जा रही है, क्योंकि इह है जी इक लोक गीत।

0: 31 जुलाई 2026 है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको।
4: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दा 1 बज रहा है। हुण सुनदे हां हिंदी समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
6: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
5: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा

0: पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ 1:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ।

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। मुलाजमां दे प्रोविडेंट फंड बारे संस्था UPFO ने माफ़ी स्कीम 2026 शुरू की थी। इस तहत आमदन टैक्स कानून 1961 तहत मानता प्राप्त छूट दे नाल प्रोविडेंट फंड ट्रस्टां नूं चलाउण वाले अदारियां नूं अपनी स्थिति नूं नियमित करन दा एक मुश्त मौका प्रदान किया गया है। किरत ते रुजगार मंत्रालय ने किया है कि यह स्कीम 6 महीनों की म्याद लिए लागू होगी। यह स्कीम आमदन टैक्स कानून 1961 तहत मानता प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्टा नूं चलाउण वाले अदारियां ते लागू होगी। मंत्रालय मुताबिक योग अदारियां नूं संबंधित खेतरी दफ्तर नूं ईमेल राही एक बाकायदा अर्जी जमा कराउण दी लोड़ होगी। छोट प्राप्त प्रोविडेंट फंड एक मालक प्रबंधित PF स्कीम है जो अपने प्रोविडेंट फंड योगदानों नूं सीधे EPFO विच जमा करन दी बजाय एक निजी ट्रस्ट राही अंदरूनी तौर ते चलाउंदी है। पंजाब भर विच वोटर सूचियां दी विशेष गैन सोध SIR तहत घर घर जा के गणना करन दी प्रक्रिया निरंतर तेजी नाल चल रही है। इस मुहिम नूं होर हुलारा देण ते जनता दी वध तों वध हिस्सेदारी नूं उत्साहित करन लई अज पंजाब भर दे सारे वोट केंद्रां ते विशेष कैंप लाया जा रहा है। सवेरे 8 बजे तो शुरू होया कैंप दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। अजिहा एक कैंप कल भी लाया गया सी। इन्हां कैंपां दौरान बाकी रहिंदे गणना फार्म भरे इकट्ठे ते डिजिटाइज कीते जा रहे ने। वोटर सूची दीआं खामियां ते फर्क नूं दूर कीता जा रहा है अते नागरिकां नूं उन्हां दे वोट दे वेरव्यां नूं अपडेट अते तसदीक करन विच सहायता कीती जा रही है। चंडीगढ़ विच वी इह 2 दिनां दे विशेष कैंप लाए जा रहे ने। बटाला दे हाथी गेट नेड़े अज तड़कसार कबाड़ ते गोदाम नूं अग लग गई। अग काफ़ी भयानक सी पर बटाला गुरदासपुर ते अमृतसर तो अग बुझाऊ गड्डियां दी मदद दे नाल इस ते काबू पाया गया। गल्लबात दौरान अग बुझाऊ अमले दे अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि सूचना मिलते ही अग बुझाऊ अमला फौरन मौके ते पहुंचया ते नाल दे जिलियां कोलों अग बुझाउण वालियां गड्डियां मंगवाईयां गईयां ते अग ते काबू पाया गया। अग लगन दे कारण दा अजे तक पता नहीं लग्या है। गुरदासपुर के पुलिस स्टेशन बैरामपुर अधीन आउंदे पिंड जगोचक टांडा के खेतों में एक शक्की ड्रोन मिलिया है। ड्रोन देख के स्थानक लोगों वालों तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिस तों बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए DSP दीनानगर रजिंदर मिनहास ने दस्सिया कि मौके पर पहुंच के ड्रोन नूं कब्जे में लैके जांच शुरू कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे ते आले दुआले के इलाकों की बारीकी नाल तलाशी ली जा रही है। सूबे विच चल रही मुहिम गैंगस्टरां दे वार दे 172वें दिन पंजाब पुलिस ने कल राजभर विच गैंगस्टरां दे साथियां दे पछाणे गए ते मैप कीते गए 661 टिकाणियां ते छापेमारी कीती। जिक्रयोग है कि गैंगस्टरां दे वार पंजाब नूं गैंगस्टर मुक्त सूबा बनाउण लई फैसला कुंजांगे जो 20 जनवरी 2026 नूं पुलिस डायरेक्टर जनरल DGP पंजाब गौरव यादव वालों शुरू की गई सी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF पंजाब के तालमेल नाल सारे जिलों दीआं पुलिस टीमां राजभर विच विशेष कार्रवाइयां कर रही ने। 172

होश हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है। मत होश हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है। कर लेना किसी से प्यार कहीं दिल अपना दीवाना लगता है। मत होश हवा मत वाली

गई है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने इस पत्र नूं पूरी तरह फर्जी करार दिता है। अंत विच चोणवीं खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड दे 6 दिनां दे सफल दौरे तों बाद नवीं दिल्ली परत आए ने। कर्मचारी भविख निधि संगठन ईपीएफओ ने माफ़ी स्कीम 2026 शुरू की है। कतर के साबक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 साल की उम्र में देहांत हो गया है। अमरीका ने अज सवेरे ईरान से ताज़ा हवाई हमले किए ने। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सैमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। फ्रांस का स्पेन ते अर्जेंटीना का इंग्लैंड नाल मुकाबला होगा। इस दे नाल ही खबरों का राष्ट्रीय बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 होएगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर बार बार हमले होने पर तश्वीश का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले इदारों के लिए 6 महीने की आम रियायत की स्कीम शुरू की है ताकि उनके दर्जे को बाजाब्ता शक्ल दी जा सके। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बचा लिया गया है जबकि एक भारतीय शहरी लापता बताया गया है। वजारत ने कहा है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और तलाश और बचाव की कार्रवाई में ओमान के हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए है। भारत ने ओमान के हुक्काम की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर बार बार हमले होने के वाकयात पर तश्वीश का इजहार भी किया है। उसने फौरी तौर से कशीदगी दूर किए जाने और मुजाकरात के जरिए सिफारती हल निकाले जाने की अपील दोहराई है ताकि खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल हो सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया जिसके दौरान वजीर आजम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर के साथ 2 तरफा बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी की पेशरफ का जायजा लिया। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहमियत के हामिल और नायाब मादनियात, ज़रात, बहरी सिक्योरिटी और खला के शोबों में समझौतों और मुफाहमत नामों का तबादला किया। दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन सिविलियन एजाज से सरफराज किया गया। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंचे जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे जहां दोनों मुल्कों के वजीर आजम ने भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक साझेदारी के कायम का ऐलान किया और 2 तरफा तिजारत को बढ़ाकर साल 2030 तक 2 गुना तक करने का हदफ मुकर्रर किया। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: BJP ने कहा है कि भारत बहरे हिंद और भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक इस्तेहकाम कायम करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हाल ही में सेशेल्स और इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे ताकि क्लीदी ताल्लुकात को मजीद मुस्तक

0: बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता एक अहम कामयाबी है। जनाब संबित पात्रा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों ने जल्द से जल्द समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा क्लीदी और इकतसादी संग मील करार दिया। उन्होंने वजीर आजम के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के 10 अहम निकात को उजागर किया। इनमें बहरे हिंद, भारत बहरुल काहिल क्लीदी इतिहाद, दिफाई और बहरी इश्तराक, अहम मादनियात के शोबे में ताउन, तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और तालीमी साझेदारी शामिल हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी मालियत 405 करोड़ रुपए है। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाने की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया और उनके लोकसभा हल्के गांधीनगर में इस मौके पर 125 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने एक तवील मुद्दती माहौलियाती खाके को उजागर किया ताकि 2029 के इंतखाबात होने तक इस चुनाव हलके में 20% इलाके को सरसब्जो शादाब बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो शमसी रूफ टॉप से अपनाएं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मोशी के कूड़े करकट के डिपो के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। आज बचाव कार्रवाई के चौथे दिन 7 और अफराद की लाशें निकाली गई हैं। एक शख्स अब भी कूड़े कचरे के ढेर के नीचे फंसा हुआ है और तलाश की कोशिशें जारी हैं। यह हादसा इस महीने की 8 तारीख को उस वक्त पेश आया था जब पुणे जिले में मोशी के मुकाम पर कूड़े कचरे का एक बड़ा टीला फाजिल मादों और कचरे वगैरह से तवानाई बनाने के प्रोजेक्ट की इंतजामी इमारत पर ढह गया था और 23 अफराद फंस कर रह गए थे। अमेरिका ने ईरान पर आज सुबह फिर फिजाई हमले किए। अबनय हुरमुज में एक कमर्शियल बहरी जहाज पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ये फिजाई हमले किए हैं। मालूम हुआ है कि कमर्शियल बहरी जहाज में हमले के बाद आग लग गई और इसके अमले के अहलकारों को बहरी जहाज से उतरना पड़ा। अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि उसने ईरान के तकरीबन 140 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है जिसमें मिजाइल, ड्रोन और मवासिलाती मराकज शामिल हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने उर्दुन में भी अमेरिका के एक फौजी ठिकाने पर हमले करने का दावा किया है। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने आम रियायत की स्कीम 2026 का आगाज किया है ताकि मुस्तसना प्रोविडेंट फंड चलाने वाले इदारों को अपने दर्जे को बाजाबता शक्ल देने का एक वक्ती मौका फराहम किया जा सके। लेबर और रोजगार महकमे की वजारत ने कहा है कि मजकूरा स्कीम 6 महीने की मुद्दत के लिए बरकरार रहेगी। मजकूरा स्कीम का इतलाक उन इदारों पर होगा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत तस्लीम शुदा प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चला रहे हैं। वजारत ने कहा है कि अहल इदारों को ईमेल के जरिए बाजाबता दरख्वास्त मुतालिका इलाकाई दफ्तर को पेश करना होगी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी का इंतकाल हो गया है। वो 74 साल के थे। उन्होंने खलीजी मुल्क कतर को आलमी सतह पर सिफारतकारी, मीडिया और सरमायाकारी के शोबों में एक सरकर्दा मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। शेख हमद ने कतर पर 18 साल तक हुकूमत की जिसके बाद 2013 में रजाकाराना तौर पर अपने बेटे को इख्तदार सौंप दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा सानी एक नजरिया साज रहनुमा थे जिन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर पहुंचाया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। आज ही ख्वातीन डबल्स का फाइनल भी खेला जाएगा जो भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में

0: सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। बुध के रोज पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को खेला जाएगा, जिसमें इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। और विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਫੌਜੀ ਵੀਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਨਗਮੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੀਤ।

लॉजी फौजी वीरों, इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दी आवाज़ां च सुनदे हां कामचोर फिल्म का यह गीत।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे

0: योग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे

0: स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
2: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा

0: हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ।

0: दर्शन जिसने पाया आग्या पा गोरख दी पूरन बिच बाग दे आया
1: पूरन ने सी बिच बाग दे तूनी जदों तपा

पंचकुला तो ने आशु, अश्विनी, गोबिंद, टोनी, लव ते भाविक। साधुल शहर तो ने ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान। पिंड पक्षी खुर्द फरीदकोट तो ने सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल ते गुरलीन ते सारा गिल परिवार। अमरगढ़ तहसील साधुल शहर तो ने कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, राजा सिंह मान, कलविंदर कौर मान ते के एस मान। आओ दोस्तों इन्होंने सारे की मिली जुली फरमाइश से सुनते हाँ प्रोग्राम का अगला गीत।

ऐलान किया गया है। कतर दे साबका अमीर शेख हमद बिन अल खलीफा अल थानी दा 74 साल दी उम्र विच देहांत हो गया है। अमरीका ने आज सवेरे ईरान ते ताज़ा हवाई हमले किए ने। पंजाब भर विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR तहत घर घर जाके गणना करन दी प्रक्रिया निरंतर तेजी नाल चल रही है। सूबे विच चल रही मुहिम गैंगस्टरां ते वार दे 172वें दिन पंजाब पुलिस ने कल राज भर विच गैंगस्टरां दे साथियां दे पछाणे गए 661 टिकाणियां ते छापेमारी कीती। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पंजाब समेत देश दे उत्तरी अते पूर्वी हिस्सों च भारी बारिश की पेशीनगोई कीती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप च सैमीफाइनल मुकाबले तय हो गए ने। फ्रांस दा स्पेन नाल ते अर्जेंटीना दा इंग्लैंड नाल मुकाबला होवेगा। आज 2 विंबलडन खिताबां पुरुष सिंगल्स अते महिला डबल्स दा फैसला होवेगा। ए तां सन अज दीआं मुख खबरां। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आओ हुण सुणदे हां हिंदी साहित्यक पत्रिका परिमल।

0: परिमल के आज के इस अंक में आप सुनेंगे एक परिचर्चा, साहित्य के साथ जुड़ना क्यों जरूरी। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुरेश नायक, डॉक्टर तरसेम गुजराल व प्रोफेसर राजेंद्र तोकी।
1: मैं डॉक्टर सुरेश नायक परिमल कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री तरसेम गुजराल जी और प्रोफेसर राजेंद्र टोकी जी, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: आज का विषय बड़ा सामयिक है, बहुत आवश्यक है आज इस पर चर्चा करना कि साहित्य से जुड़ना क्यों जरूरी है। साहित्य जिसका अर्थ ही है सबका हित करने वाला, सबको समाहित करने का जिसमें भाव हो, वह साहित्य है। साहित्य से जुड़ना स्वयं से जुड़ना है। साहित्य ही वह जगह है जहाँ जड़ चेतन सबको बोलने की स्वतंत्रता है। मानव ही नहीं, पूरी कायनात अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराती है। अन्याय असंगति के विरुद्ध आवाज़ साहित्य ही उठाता है, और सबसे खूबसूरत बात, साहित्य सामूहिक भावना को जगाता है।
2: बिल्कुल ठीक।
1: तो आप देखिए, जिस साहित्य की इतनी महिमा है, जिस परंपरा को पोषित करके मानव मानव बन सका है, आज उसी स्वाध्याय की प्रवृत्ति घट रही है
3: जी।
1: नई पीढ़ी लिसनर और व्यूअर बनकर रह गई है, रीडर नहीं तो राइटर कैसे बनेगी। ये जानबूझकर मैंने अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया। राजेंद्र टोकी जी, देखिए आप इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं?
3: नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण समस्या आज हमारे सामने है। देखिए, नई पीढ़ी ने भी नौकरी लेनी है, काम करना है सारी जिंदगी, और सारी जिंदगी काम करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है
1: जी।
3: भाषा के बिना आप दो कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको अच्छा व्यवसाय चाहिए, अगर आपको अच्छी नौकरी लेनी है, अगर आपने बहुत अच्छे भाषण देने वाला भी बनना है, तो कम से कम आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है और निश्चित मानना है कि जब तक आप साहित्य का अध्ययन नहीं करेंगे, आपकी भाषा परिष्कृत नहीं हो सकती, आपकी भाषा आपको अपने रोजगार के अनुरूप नहीं कर सकती। सो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अगर विद्यार्थी और नौजवान पीढ़ी अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसे भाषा की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी आज व्यवसाय जहाँ भी आप चले जाइए, भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, वही आपकी आजीविका है, तो उस पर ध्यान देना आवश्यक है, और उसके लिए साहित्य का अध्ययन अत्यावश्यक है। अगर आप साहित्य नहीं पढ़ते हैं, आपकी भाषा वही कच्ची रहेगी, आपकी भाषा वही इंग्लिश रहेगी, और उससे आप आगे विकास नहीं कर सकते, ना आपके व्यक्तित्व का विकास हो, ना आपके कार्यक्षेत्र में विकास हो। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण साहित्य का योगदान अगर हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, तो वो भाषा ही है। मुझे एक बात याद आती है गुजराल साहब, मैं आपसे ध्यान दिलाना चाहूँगा, आप तो इन चीज़ों से गुजरे हैं। कभी हम जब छोटे होते थे, तो अगर हमें कोई भाषा नहीं आती, मान लीजिए हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, तो हमें

0: ये कहा जाता था कि अगर आपने भाषा में अपनी महारत करनी है तो आप जासूसी उपन्यास पढ़िए। उन जमाने में जेम्स हार्डी चेज के उपन्यास बहुत चलते थे, तो हमें कहा जाता था कि चेज के उपन्यास पढ़िए आप, सिर्फ इसलिए कि आपकी भाषा अच्छी हो सके, आपकी भाषा परिष्कृत हो सके और आगे आप आगे बढ़ सको। और आज तो आप कोई भी व्यवसाय में जाना चाहते हो तो भाषा महत्वपूर्ण है, बल्कि अब तो अगर आपने जीवन को समझना है, आदमी के मनोविज्ञान को समझना है, व्यक्ति की मनोवृत्तियों को समझना है, तो साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे लिहाज से तो आप मनोविज्ञान नहीं पढ़ सकते, आप दर्शन
1: आप
0: शास्त्र नहीं पढ़
1: बिल्कुल,
0: सकते।
1: आपने भाषा का जो कहा है ना, भाषा के साथ संप्रेषणीयता जुड़ी हुई है,
0: जी जी
1: चाहे
0: बिल्कुल
1: आप लिखने के लिए या बोलने के लिए। यदि
0: जी
1: आप भाषा में माहिर हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो भाषा में साहित्य रचा नहीं जाता, वो भाषा कितने भी चर्चित क्यों ना हो, लेकिन रूपवती भिखारिन की तरह से है।
0: हाँ
1: तो साहित्य और भाषा का पारस्परिक संबंध है, आप अच्छे वक्ता भी तभी बनेंगे। गुजराल साहब, आप क्या सोचते हैं इस विषय में?
2: भाषा पर बड़ी उल्लेखनीय बातें टोकी साहब ने की हैं,
1: जी
2: लेकिन मैं इसके साथ भाव प्रवणता को भी जोड़ना चाहता हूँ
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल,
0: सही
2: कि
0: है, सही
2: आपके
0: है।
2: भाव अगर सादिक नहीं हैं, पवित्र नहीं हैं, आपके भाव सही नहीं हैं, तो भाषा उसको ज़्यादा मदद नहीं करेगी। मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य भोगता है और अपने भोगतापन का ईमानदार गवाह भी है। जितना उसका इस साक्ष्य से एकात्म स्थापित होता है, उतना ही उसकी स्वतंत्रता का क्षेत्रफल बढ़ता है। तब मूल्यों की सृजना होती है जो सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। साहित्य क्योंकि सृजनशील है, संवेदनात्मक है, इसलिए इस चेतना को निर्मित करने में मददगार रहता है। कई बार आगे बढ़कर झूठ सच के बीच निपटारा करने में भी अपनी भूमिका निभाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल ठीक है,
1: बिल्कुल
2: साहित्य में
1: सही है।
2: विवेक देता है, अच्छे बुरे की समझ देता है, हमें जय पराजय संघर्ष करने की प्रवृत्ति देता है,
0: जी
2: और साहित्य की ये प्रेरणा जीवन में इतनी लाभदायक है कि आप जब निराश स्थिति में होते, तब भी आपको उजाले की किरण नजर आने लगती है।
1: यही साहित्य की
0: जी
1: आत्मा है,
0: जी
1: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो
0: बिल्कुल सही
1: साहित्य
0: है।
1: है
0: हाँ
1: ये मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। आप हामिद का देख लीजिए प्रसंग, जब प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी लिखी है तो कितना सकारात्मक उसका रवैया है हामिद का, बाकी बच्चों के लिए वो प्रेरणा बनता है। और उसकी जो दादी है अमीना, उसका भी हृदय द्रवित हो जाता है। तो साहित्य, आप प्रेमचंद को देखिए, पूरा का पूरा नवजागरण का युग है प्रेमचंद अपने आप में। वो इसलिए हो पाए क्योंकि वो संवेदनशील मानव को बनाते हैं, उनकी
0: आप
1: कहानी।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश जी। मैं आपने अभी ये कहानी की बात की तो मैं आपको दो बातें बड़ी दिलचस्प बताना चाहता
1: जी
0: हूँ। जो महानगरों में मनोविज्ञान पढ़ते हैं विद्यार्थी,
1: जी
0: उनके प्राध्यापक उनको सबसे पहले ये कहते हैं कि आप उपन्यास पढ़िए। अब ये चौंकाने वाली बात है कि एक मनोविज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति और एक प्राध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को ये कहे कि
1: उपन्यास।
0: उपन्यास पढ़िए। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि मानव मनोविज्ञान को समझने का बेहतरीन तरीका जो है वो उपन्यास और कहानियाँ ही हैं, क्योंकि उससे आपको मनुष्य के विविध व्यवहारों का पता चलता है, आदमी के मनोभावों का पता चलता है। एक बात,
2: टोकी जी,
0: दूसरी
2: उपन्यास
0: दूसरी
2: वाली
0: बात।
2: बात आपकी बहुत संगत इसलिए भी है
0: जी,
2: क्योंकि उपन्यास हमारे सामने कई जिंदगियां खोलता है
0: बिल्कुल
2: बहुत
0: वही
2: बढ़िया,
0: वही
2: और
0: बोलने जा रहा था
2: आपके
0: मैं।
2: अनुभव को बहुत गहरा करता है, क्योंकि
0: बिल्कुल
2: आप एक जिंदगी जीते हो और उपन्यास, एक एक उपन्यास कई जिंदगियां आपके सामने ल्याकर रख
0: अच्छा
2: देता
0: इस
2: है, और
0: जी
2: आप उस अनुभव के दौर से गुजरते हो।
0: जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो गुजराल साहब। इसमें एक चीज़ और भी जोड़ लीजिए, मैं आपको बड़ी और नई बात बताऊं आपको। दो रचनाओं की मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा।
2: जी
0: एक, अगर आप मान लीजिए मेरी अब जीवन में इच्छा रही कि मैं मनोविज्ञान पढ़ूं और दर्शन शास्त्र पढ़ूं, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, तो लेकिन अगर मुझे मनोविज्ञान पढ़ना है और दर्शन शास्त्र पढ़ना है, तो मुझे उपन्यास और कहानी से बेहतर कोई चीज़ नहीं मिलेगी।
2: बिल्कुल
0: और
2: बिल्कुल
0: मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये कि पश्चिम में एक उपन्यासकार हुए हैं, जस्टिन गार्डन।
2: जी जी जी
0: उन्होंने एक उपन्यास शैली में विश्व की जो दर्शन शास्त्र है उस पर एक उपन्यास लिख डाला, सोफीज वर्ल्ड।
2: जी जी जी
0: उसे सोफी
2: जी
0: का संसार
1: जी
0: नाम से
2: जी
0: हिंदी
2: चर्चित
0: में
2: नाम
0: अनुवाद
2: है,
0: भी हुआ
1: ठीक है,
0: है,
1: सोफी
0: चर्चित
1: वर्ल्ड
0: उपन्यास।
1: है।
0: अब वो उपन्यास जो है वो आपको पश्चिम के पूरे दर्शन शास्त्र का अध्ययन करवा देता है, और एक दिलचस्प ढंग से।
2: जी जी
0: इसी तरह से हमारे हिंदी में एक शरद देवड़ा है, उन्होंने काम विज्ञान के ऊपर एक उपन्यास लिख दिया, प्रेमी प्रेमी का संवाद। अब वो एक सैद्धांतिक चर्चा एक तरफ रह गई और उपन्यास एक तरफ हो गया, तो आपको दिलचस्प ढंग से दर्शन शास्त्र के भी अध्ययन हो गया और मनोविज्ञान का भी अध्ययन हो गया। और अगर आपने

0: इतिहास को समझना है तो इतिहास को समझने का बेहतरीन तरीका भी साहित्य ही है, क्योंकि साहित्य आपको वो जो इतिहास की नीरसता है उससे दूर ले जाता है और
1: रोचकता पैदा
0: आपको
1: करता है।
0: रोचक ढंग से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का दृष्टिगोचर भी करवा देता है।
1: आपने साहित्य को मानव के अंतर जगत की जो सूक्ष्म तहें हैं
0: जी
1: उनसे परिचित करवाने का एक बहुत अच्छा आधार बतलाया है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहिर्जगत है जिसमें हम रूढ़ियाँ देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पाखंड और वितंडावाद में समाज मशगूल है, तो
0: जी
1: ऐसे में अगर आप देखें तो कबीर भक्ति काल से ये बात चली हुई है। कबीर को अगर हम देखें तो कबीर ने युगांतरकारी जीवन को जी करके बतलाया कि किस प्रकार से हम धार्मिक पाखंडों से दूर होना चाहिए। वो
0: जी
1: इसलिए हो पाया क्योंकि साहित्य हमारे मर्म पर चोट करता है।
0: जी
1: पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं
0: पहाड़,
1: पहाड़,
0: हाँ
1: ताते ये
0: छके को
1: चाकी
0: छके
1: भली
0: भाई
1: पीस खाए
0: पीस खाए
1: संसार।
0: सांस।
1: आज भी ये हमें दोहे कंठस्थ क्यों हैं? क्योंकि इनमें शाश्वत सत्य है कि जो शाश्वत तत्व है वो अमर तत्व हमारे भीतर है, तो ये साहित्य ही बतला सकता है।
0: बिल्कुल सही
1: तो साहित्य में रूढ़ियों पर प्रहार करने की शक्ति है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ
0: जी जी
1: कि ये हमारी कल्पना शक्ति को भी उर्वर बनाता है। जब हम
0: हाँ
1: साहित्य को पढ़ते हैं, जब आप शब्द से जुड़ते हैं, आप उपन्यास की बात कर रहे थे टोकी साहब, आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, आप एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं। तो ये जो समानांतर एक दुनिया सृजित होती है उसके कल्पना करने वाले आप हैं, तो
0: बल्कि
1: पाठक भी यहां पर एक सर्जक हो जाता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बल्कि ये होता है कि उपन्यास के जो पात्र हैं उनकी छवियां आपके चेहरे पर दिखाई
1: अंकित हो
0: देने लग
1: जाती
0: जाती हैं,
1: हैं।
0: आप अपने ढंग से उनकी छवियां बनाते हो।
1: बहुत बढ़िया
0: टोकी
1: जी
0: जी की जो
1: जी
0: बात पहले उन्होंने कही ना उपन्यास और इतिहास वाली,
1: जी
0: वो बड़ी गौरतलब है। हमारे सामने हमने भारत पाकिस्तान के विभाजन को झेला है
1: जी बिल्कुल
0: और आज तक हम उसकी पीड़ा के दंश को झेल रहे हैं,
1: बिल्कुल सही
0: और इन स्थितियों पर इतिहास को सामने रखते हुए और हमारे सामने ये बोध करवाते हुए कि ये विभाजन और सांप्रदायिक तत्व कितने खराब हैं, हमारे सामने उपन्यास है झूठा सच, तमस, आधा गांव, मुट्ठी भर कांकर,
1: जी बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: 4-5 सशक्त उपन्यास हैं। तीसरा ये कि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो किस तरह से अपना काम करती हैं और हमें अपने मानवीय धर्म से विचलित करके कुरास्ते पर ले जाती हैं, और हम मनुष्य जो मनुष्य से प्रेम करता है स्वाभाविक तौर पर उसकी हत्या करने, उसको नुकसान पाने पर उतारू हो जाते हैं, ये प्रवृत्ति आज तक हमारे समाज में है।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: आज
1: है
0: भी इस तरह की कहानियां बहुत संख्या में आ रही हिंदी में जिनमें सांप्रदायिकता का विरोध किया जा रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो ये
1: सही कह रहे
0: सारी
1: हैं
0: चीजें एक जगह एकत्रित होकर आप पर प्रेशर बनाती हैं कि आप मनुष्य को मनुष्य की तरह पहचानो और आपकी संवेदनात्मकता को जगाते हैं, ये साहित्य ही कर सकता है।
1: करबला
0: नहीं
1: में मुंशी
0: एक
1: प्रेमचंद यही कर रहे हैं।
0: नहीं
1: वो
0: एक
1: परस्पर सौहार्द के लिए वो एक ऐसे विषय को लेते हैं जिससे दूसरी जाति बिल्कुल अनभिज्ञ है, तो एक साहित्यकार का यह दायित्व हो जाता है।
0: नहीं मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे बड़े संक्षिप्त शब्दों में हम
1: जी
0: ये भी कह सकते हैं, देखिए इतिहास जब पार्टीशन की बात करेगा तो वो आपके सामने तथ्य रख देगा,
1: रखेगा
0: लेकिन आपकी संवेदना को जगाने का काम और उस पार्टीशन में जो पीड़ा लोगों ने भोगी है, जो कष्ट लोगों ने भोगे हैं, जो परेशानियां लोगों ने भी झेली हैं,
1: वो
0: वो
1: साहित्य
0: सारी की
1: बताता,
0: सारी साहित्य ही
1: वो
0: देगा।
1: साहित्य
0: साहित्य
1: बताता।
0: अच्छा दूसरी बात जो इसके साथ जुड़ने वाली है वो ये कि केवल साहित्य हमारे अपने समाज का ही दर्पण नहीं है। अगर आप पश्चिमी साहित्य को पढ़ते हो तो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के लोगों का स्वभाव भी आपको पता चलता है। तो इसलिए साहित्य तो आवश्यक है किसी भी कम्युनिटी को जानने के लिए। तो इसलिए हमारा साहित्य जो है ये केवल हिंदी साहित्य की बात नहीं हो रही, अगर आप विश्व साहित्य को भी देखोगे, अब मैं रूस तो जा नहीं सकता लेकिन रूसी उपन्यासों को पढ़ के, रूसी साहित्य को पढ़ के मैं वहाँ के लोगों की मानसिकता,
1: रूस की क्रांति
0: उनका
1: को समझ सकते
0: परिवेश,
1: हैं।
0: उनकी क्रांति, उनके जीवन के संघर्ष बहुत अच्छे तरीके से जान
1: यहाँ
0: सकता।
1: अनुवाद की भूमिका अहम हो जाती है, लेकिन एक पक्ष हमें यहाँ पर यह भी लेना चाहिए कि जो काव्य है, कविता है,
0: जी
1: वह कहीं ना कहीं अब हाशिए पर जा रही है। कहने को तो कवि बहुत हो रहे हैं, लेकिन कवियों का एक जो संवेदना को जगाने का कविता के माध्यम से हमारे भीतर एक अमरत्व के प्रति, हमारे भीतर जो अमृत तत्व है और आत्मवत् सर्वभूतेषु की जो हमारी संस्कृति है उसको जगाने की जो एक भूमिका है, उसमें कभी पीछे रह गए हैं। विचारधाराओं के रथ पर सवार साहित्यकार दिग्विजय तो करना चाह रहे हैं, साहित्य के सुकोमल पक्ष को नष्ट करके उसे कहीं ना कहीं हथियार बना रहे हैं। भाषा नीरस हो रही है, परंपरा और इतिहास से कहीं ना कहीं हम टूट भी रहे हैं। साहित्य में अब कविता की

0: अनुपस्थिति में ऊब भरा परिदृश्य बन गया है। देखिए, छंद की आवश्यकता सदैव रहेगी, चाहे हम कितने भी बौद्धिक हो जाएं। काव्यमय है अस्तित्व, हम बौद्धिक हैं, लेकिन सामंजस्य, समन्वय। आप रामचरितमानस की बात करिए, आप गीता उपनिषद की बात करिए, कबीर, सुर, तुलसी, बिहारी, मीरा की बात करिए, ये सारी परंपराएं अभी हमें विच्छिन्न होती क्यों नज़र आ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो भावनाएं हैं वे समाप्त हो रही हैं, हम बाजारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अति बौद्धिकता के भंवर में फंस करके कह तो रहे हैं कि हम संवेदनशील नहीं बन पा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अब कवि के भीतर ऐसे भाव होंगे तभी वो समाज को ऐसी कविताएं देंगे।
1: ये तो ठीक है,
0: आज पुरस्कार के पीछे हम इतना दौड़ रहे हैं कि हम तत्व को भूलते जा रहे
1: नहीं
0: हैं।
1: नहीं सुरेश जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन
0: जी
1: इसके कारणों में आप जाएंगे तो कारण मुख्य यही है कि हम साहित्य से कट रहे
0: कट
1: हैं।
0: रहे हैं,
1: साहित्य से अगर हम जुड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि निराला फिर दोबारा नहीं हो सकते। जब ऐसी संवेदना हमारे आज के समाज की संवेदना और है, तो वो संवेदनाएँ अभिव्यक्त आज भी कवि कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उपन्यास लिखे जा रहे हैं आज भी, कहानियाँ भी लिखी जा रही हैं हमारे समाज से जुड़े हुए
2: सुरेश नायक
1: जो
2: जी, जो
1: नौजवान
2: आपने
1: लड़के लड़कियाँ हैं वो
2: जो आप
1: हैं।
2: ये
1: एक
2: कह
1: मिनट
2: रहे हो,
1: गुजराल साहब, एक चीज़ मुझे बस कहनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। वो ये कहते हैं कि सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का ही नाम साहित्य है।
2: बिल्कुल
1: ये
2: बिल्कुल
1: हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। और वो ये भी कहते हैं साथ ही कि मनुष्य को छीना झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबारने का काम साहित्य करता है।
0: बहुत बिल्कुल,
1: अब जो आप बात कर रहे थे उसका तो मूल कारण ही है।
0: जी
2: सुरेश जी, आपने जिन कविताओं का उल्लेख किया है वे निस्संदेह हमारे समय की महत्वपूर्ण कविताएं हैं, लेकिन जो उसके बाद के कवि कविता कर रहे हैं वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: आप कात्यायनी की कविताओं को देखिए,
1: जी
2: मुक्तिबोध के बाद दर्जनों ऐसे नाम हैं, श्रीकांत वर्मा की कविताएं देखिए, अनेक कविताकार बहुत सुंदर कविताएं रच रहे हैं और उनके संग्रह भी आ रहे हैं। और दूसरा ये कि ये जो बाजारवाद है, ये जो पतनशीलता है, ये सारी इन कविताओं में उजागर हो रही है और समय के तनाव को अंकित कर रहे हैं ये सभी कवि। और जितना भी समय हमारे हाथ से जो कि छीता जा रहा है, हम असंवेदनशील होते जा रहे हैं, उस पर प्रहार भी करती हैं ये कविताएं।
1: देखिए,
0: लेकिन इनकी
1: बिल्कुल,
0: लेकिन
1: ये
0: इनका जो पाठक वर्ग है, इनकी जो रेंज है, जहाँ तक इनको पहुँचना चाहिए एक जन सामान्य तक, वो उनका कंठहार नहीं बन पा रहा साहित्य।
2: नहीं नहीं, वो अलग बात है।
1: देखिए, मेरी बात सुनिए,
0: साहित्य तो रचा जा रहा है।
1: मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, बात मूल ये है कि साहित्य में हमारी रुचि जो है वो थोड़ी
0: कम होती
1: है।
0: जाती।
1: अगर हमारी रुचि ज़्यादा बढ़ती है, साहित्य पढ़ते हैं लोग, तो संवेदना उभरेगी, ये निश्चित है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि लिखना कम हो गया या पढ़ना कम हो गया है। पत्रिकाएं आज भी बिक रही हैं, किताबें भी बिकती हैं, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता कई बार। और कई बार जी,
2: ऐसे
1: आप
2: में
1: कुछ कह रहे थे,
2: ऐसे में ना बड़े क्रांतिकारी काम भी हुए हैं।
1: जी बिल्कुल हुए हैं।
2: जब प्रेमचंद आए हैं उस समय क्या साहित्य हमारे सामने परोसा जा रहा था?
1: ही नहीं था,
2: हिंदी साहित्य के नाम पर कुछ भी नहीं था हमारे पास। तिलस्मी और अयारी उपन्यास थे, जो सुशील उपन्यास थे। प्रेमचंद ने परिवर्तन किया, समाज से जोड़ा, होरी और धनिया को हमारा मित्र बना दिया। और ये संवेदनशीलता प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में तो उजागर की ही, जो उन्होंने साहित्य के बारे में अपनी बातें कही हैं कि साहित्य को जनता के साथ कैसे जोड़ना है, कैसे अपना प्रतिरोध दर्ज करना है, ये सारी बातें बड़ी उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है।
0: किंतु कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि शिक्षा के परिदृश्य में साहित्य को पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनकी संख्या कम हुई है? देखिए, साहित्य से आपका जो पहला परिचय होता है, यदि आप में भाषा और साहित्य के प्रति नैसर्गिक लगाव नहीं है, आपका पहला परिचय होता है विद्यालय महाविद्यालय में।
1: सुरेश जी, ये
0: तकनीकी विषय अधिक पढ़ाए जा रहे हैं।
1: सुरेश जी, ये जो बातें आप कर रहे हो ना, ये किसी और दृष्टि से इन पर विचार बहुत व्यापक दृष्टि से करने की आवश्यकता है। बात ये है कि विद्यार्थी कम हो रहे हैं, केवल इसी विषय में कम नहीं हो रहे हैं, हर विषय में कम हो रहे हैं। आप इतिहास ले लीजिए, आप मनोविज्ञान ले लीजिए, आप अर्थशास्त्र ले लीजिए, आप राजनीति शास्त्र ले लीजिए, कौन सा विषय ऐसा है जहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं हो रही, लेकिन फिर भी साहित्य पढ़ा जा रहा है। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, पहले पेपरबैक संस्करणों की कोई अवधारणा नहीं थी, अब जितने प्रकाशक हैं वो सस्ते दामों में साहित्य को उपलब्ध भी करवा रहा है
2: और मेले लग रहे हैं, पुस्तकों

0: मेले लग रहे हैं, इतनी
1: और ऐसा नहीं
0: है
1: है,
0: उसमें
1: अभी विश्व पुस्तक मेला लगा था, आप
0: लोगों ने
1: जरा
0: किताबें
1: देखिए वहां जाके, पता कीजिए कि वहां कितनी किताबें बिकी हैं, केवल अंग्रेजी की नहीं, बाकी भाषाओं की भाषाएं भी कितनी किताबें
0: साहित्य
1: बिकी
0: से
1: हैं।
0: प्रेम करने
1: ऐसा
0: वाले
1: नहीं है,
0: हरिद्वार जाना समझकर पुस्तक मेले
1: हाँ,
0: में जाते हैं।
1: वो जो बदल रहे हैं विद्यार्थियों की गिनती कम हो रही है, उसके कारण कुछ और हैं,
2: साहित्य के
1: उसका
2: विद्यार्थी
1: कारण
2: जो
1: कुछ
2: हैं
1: और है, और
2: भाषा,
1: उन कारणों पर अभी हम यहाँ विचार नहीं कर सकते क्योंकि वो विषय बहुत लंबा है।
2: लेकिन भाषा और साहित्य जो हमें जीवन में सरसता प्रदान करता है, एक दूसरे के साथ जो हमारा साहचर्य बनता है, उसे हमें और अधिक पल्लवित करने की
1: बिल्कुल
2: आवश्यकता है,
1: आवश्यकता है।
2: वो
1: मैंने मैंने शुरू
2: आवश्यकता।
1: में ही एक बात कही है कि
2: हाँ
1: जब तक हम अपनी भाषा का परिष्कार नहीं करेंगे, हम आगे विकसित नहीं हो सकते, हम अपने व्यवसाय में भी बहुत ज़्यादा अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब हम भाषा से जुड़ेंगे, और भाषा से जुड़ने का एकमात्र साधन ग्रामर
0: साहित्य
1: नहीं है, व्याकरण
2: साहित्य
1: नहीं है,
2: नहीं है,
1: साहित्य ही
2: साहित्य
1: है,
2: साहित्य
1: तो
2: साहित्य
1: आपको साहित्य, अगर आपको अपने जीवन को बहुत विकसित करना है, अगर आपको आजीविका में आगे विकास करना है, उन्नति करनी है और बहुत अच्छी जीविका लेनी है, तो आपकी भाषा पर आपका अधिकार आवश्यक है। विद्यार्थी इस तरफ अगर ध्यान दे लें, नई पीढ़ी अगर इस तरफ ध्यान दे ले, तो मेरा ख्याल है आपकी सारी शिकायतों का निराकरण हो जाता है।
0: साहित्य भी तो टोकी जी भाषा का वस्त्र पहनकर ही आता
1: ये
0: है,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: एक
1: वही कह रहा
0: साहित्यकार
1: हूँ।
0: की जितनी भाषा अमीर होगी
1: जी
0: उतना ही उसका साहित्य अमीर होगा।
1: जी बिल्कुल
0: वो एक तरह से अपने आप को व्यक्ति भाषा के माध्यम से करता है,
1: जी
0: और सारी
1: बिल्कुल
0: संवेदना भाषा के माध्यम से ही सामने आती है। और साहित्यकार के लिए भी ये ज़रूरी है भाषा में नए नए प्रयोग करे,
2: ये जरूरी
0: भाषा
2: है
0: में अपनी पकड़ जबरदस्त
2: जी
0: बनाए, और इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब चीज़ों को शनाख्त करें और उन्हें उतारने की कोशिश
1: नहीं,
0: करें,
1: बिल्कुल ठीक कह
2: क्योंकि
1: रहे हैं आप।
2: साहित्यकार पर बड़ा दायित्व
1: बल्कि
2: है
1: ये
2: इस
1: हो
2: बात का।
1: रहा है, अब ये हो रहा है। आप देखिए, कहानी उठाइए, उपन्यास उठाइए, कविताएं उठाइए, गजलें उठाइए, आप देखेंगे कि भाषा सामान्य मनुष्य के धरातल पर आ रही है, और उसमें प्रयोग तो हो ही रहे हैं क्योंकि दूसरी भाषाओं के शब्द आ रहे
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, दुशांत ने कितने प्रयोग किए हैं
1: जी
0: गजल में,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: और एक एक शेर लोगों को जुबानी याद है, ये
1: जी
0: साहित्य की पहुंच ही है।
1: जी
2: मैं
1: साहित्य
0: आपको
1: की
0: एक
1: पहुंच
0: एक
2: है
0: व्यावहारिक बात बताता हूँ।
1: जी।
0: पिछले कुछ दिनों में मुझे भारत पाकिस्तान बॉर्डर देखने का अवसर मिला। रजौरी के आगे के फ्रंट पर मैं जब गया तो वहाँ एक चौकी थी हमारी, उस चौकी पर सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ लिखी हुई थी, वो जो सन 57 पर उनकी
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: चमक
1: जी
0: उठी सन 57 की बै तलवार
1: हाँ
0: पुरानी थी,
1: हाँ
0: बूंदे लेकर बोलों के मुखान सुनी कहानी थी।
1: हाँ
0: ये वाली पंक्तियाँ चौकी के ऊपर मोटे अक्षरों में उन्होंने लिखी हुई है, खूब
1: जी
0: लड़ी मर्दानी वो तो
1: झांसी
0: झांसी वाली
1: वाली
0: रानी
1: रानी
0: थी।
1: थी जी।
0: और साहित्य कहाँ से कहाँ तक रक्स करता है,
1: हाँ
0: कहाँ कहाँ प्रेरक बनता है, और हम लोग जान नहीं पाते वो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। असल में समस्या कहाँ है, हम लोग साहित्यकार को कथाकार की चीज़ें तो पढ़ते हैं, उसको बताते नहीं हैं कि तुमने ये कहाँ कहाँ अच्छा लिखा है। यह हमें भी एक गैप है, हमें चाहिए तुरंत फोन द्वारा, पत्र द्वारा, किसी भी तरह साहित्यकार को अपने जो भाव हमारे बने हैं उस कृति को देखकर पढ़कर उसको सूचित करने की कोशिश करें,
1: नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
2: उस पर
1: गुजराल साहब।
2: चर्चा होनी
1: एक चीज़
2: चाहिए।
1: इसमें और जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो ये है कि जो साहित्य का अध्ययन जो लोग करते हैं, वो साहित्य एकदम से कोई स्विच तो है नहीं कि एकदम
0: हाँ
1: असर कर
0: बिल्कुल
1: गया।
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: धीरे
0: बिल्कुल
1: धीरे असर करता है, धीरे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: धीरे
0: सही,
1: आपके स्वभाव को बदलता है, आपके आपकी प्रवृत्तियों को परिष्कृत करता है, इसमें समय लगता है।
0: संस्कार बदलता है
1: जी
0: आपके, आपको
1: संस्कार बदल,
0: सांस
1: और संस्कार एक दिन
0: आपको
1: में नहीं बदले जाते
0: और आपको सांस्कृतिक बनाता है,
1: जी,
0: और अच्छे बुरे की पहचान
1: पहचान
0: देता
1: पहचान
0: है।
1: देता
0: ये
1: है।
0: सबसे बड़ी बात साहित्य में है कि
1: हाँ
0: वो
1: बिल्कुल
0: भी विवेक देता है आपको,
1: जी
0: कि आप जिंदगी की राह में समझने की कोशिश करें कि
1: जी
0: क्या गलत हो रहा है, क्या अनुचित हो रहा है।
2: साहित्य जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ साथ लोक जागरण का काम करता है, साहित्य में जो लोक जागरण की जो भंगिमा है, यदि हम स्वाधीनता आंदोलन को देखें
1: जी
2: तो वंदे मातरम, या जैसे अभी आप सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में बता रहे कि उनकी पंक्तियाँ वहाँ पर दर्ज हैं, तो स्वाधीनता आंदोलन को पूरा का पूरा यदि हम देखें, भारतीय हिंदू युग से भी अगर हम देखें, तो राष्ट्रीयता की भावना हो, पाखंडों को दूर करने की भावना हो, या सच्चा जो देश प्रेम है यदि जगाना, तो आप देखिए द्विवेदी युग में है या भारतीय हिंदू युग में है, स्वाधीनता आंदोलन जो पोषित हुआ है ऐसे ही साहित्यकारों के बल पर पोषित हुआ
1: नहीं,
2: है।
1: आप बिल्कुल ठीक कह
2: तो
1: रहे हैं।
2: लोक जागरण अति आवश्यक है साहित्य के माध्यम से। मेरा यहाँ पर यह सवाल ये है कि जो लोक जागरण, जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है, जब हमें कुछ स्वाधीनता चाहिए, जब हम किसी विषय को लेकर के चिंतन

0: है तब तो हमारी सामूहिक चेतना आंदोलित हो जाती है। मैं फिर से उसी जगह पर आऊँगा, आज हम भौतिकवाद में, मटेरियलिज्म में इतना अधिक अपने आप को पाते हैं, खासतौर पर नई पीढ़ी। मैं किसी आदर्शवाद की तरफ नहीं जाऊंगा जैसे गुजराल साहब ने बतलाया, बिल्कुल व्यावहारिक बात करूंगा। नई पीढ़ी के जेबों में मोबाइल है, ठीक है, जो पुस्तकों के मेले लग रहे हैं, खूब साहित्य रचा भी जा रहा है, इसकी गणना बढ़ी है, गिनती बढ़ी है साहित्यिक, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखिए पाठकीय जो संवेदना है उसके साथ कितनी जुड़ पा रही है। हम जिस पीढ़ी से आते हैं हम साहित्य को जानते हैं, नई पीढ़ी से आप बात कीजिए, रचनाकारों की बात कीजिए, उनकी नई कृतियों की बात कीजिए, पुस्तक मेले लगते हैं, फेसबुक पर अपलोड भी होता है उनका सारा कुछ, एक ग्लैमर तो बन चुका है। ठीक है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग भी हैं, कभी भी एब्सोल्यूट्स नहीं होते, लेकिन एक बात ज़रूर है कि नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ना होगा,
1: नहीं,
0: ये बहुत
1: इसमें
0: आवश्यक
1: सुरेश जी
0: है।
1: बात आप ठीक कह रहे हो, उसमें
0: हाँ,
1: कोई मैं उस पर किंतु परंतु करने का मतलब ही नहीं है।
0: साहित्य पढ़ना
1: लेकिन
0: इसीलिए ज़रूरी है।
1: लेकिन लेकिन एक बात आप बिल्कुल ध्यान में नहीं रख रहे हैं, वो ये कि साहित्य पहले भी पढ़ने वाले लोग कम थे, आज भी पढ़ने वाले कम है। ऐसा नहीं है कि पहले साहित्य पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, और ऐसा नहीं है कि आज साहित्य पढ़ने वाले लोग बिल्कुल खत्म
0: यह
1: हो
0: मैं
1: गए हैं।
0: बताता हूँ, मैं बताता
1: एक
0: हूँ
1: मिनट, मेरी
0: इसमें
1: बात
0: क्या
1: परोसा जा रहा है, अपेक्षाकृत कम
0: कम
1: परोसा जा
0: है।
1: रहा है, लेकिन परोसा जा रहा
0: देखिए
1: है।
0: साहित्य
1: मोबाइल
0: में,
1: पर भी कितने नए लेखक आ गए जो मोबाइल के माध्यम से आज बहुत चर्चित हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ऐसा नहीं है कि साहित्य मोबाइल आ गया तो साहित्य कम हो गया, ऐसा
0: लेकिन
1: नहीं है।
0: इसमें हमारा
1: साहित्य
0: डिस्ट्रैक्शन
1: तो
0: हो
1: भाई
0: जाता
1: साहब
0: है।
1: एक सरिता है, वो तो अपना राह बनाएगा ही
0: नए
1: बनाएगा, नए रूपों में आ
0: नए नए
1: रही
0: रूपों
1: है,
0: में
1: नए
0: राह
1: रूपों में
0: बनाएगा।
1: आ रही है।
0: जो चीज़ें आप कह रहे हैं, तकनीक तकनीक साहित्य को भी तो मदद की है।
1: सुरेश जी,
0: अब
1: ये
0: आप अपने
1: आदमीगत है, हर
0: टेलीफोन,
1: चीज़ के दोनों पक्ष हैं।
0: सुरेश जी,
1: आपकी जेब
0: आप
1: में फ़ोन है, अपनी जेब, आप अपनी जेब में कविता टाइप करके तुरंत तो भेज देते हो, सुरेश जी, एक
0: तकनीक ने लाभ नहीं
1: सुरेश जी
0: पहुंचाया
1: एक
0: आपको।
1: सिंपल सी बात है। पहले हमारे पास दीपक था, आज हमारे पास बल्ब है, ट्यूब है। तो रोशनी ने अपना लिबास बदला है, रोशनी ने अपना रूप बदला है। तो अगर नए माध्यम आ रहे हैं तो हम उनकी आलोचना न करें, बल्कि उनके साथ जुड़ें, उनका सहयोग लेकर आगे
0: लेकिन
1: बढ़ें, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण
0: नई
1: है।
0: पीढ़ी को हमारा यही संदेश है कि ये नई तकनीक का आप अवश्य लाभ लें,
1: बिल्कुल, हाँ
0: लेकिन इसके साथ साथ साहित्य से भी जुड़ें। इसमें बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, पत्रिकाएं भी मिलेंगी, पुस्तकें भी मिलेंगी, इसमें ऐसे कार्यक्रम भी मिलेंगे, आप उनके माध्यम से साहित्य से
1: अक्षरों से
0: जुड़ें,
1: जुड़ना जरूरी है,
0: शब्द से
1: बस
0: जुड़ना
1: शब्द से
0: ज़रूरी
1: जुड़ना
0: है,
1: जरूरी है,
0: यही इस बात का
1: वही तो आपको
0: सारांश
1: रास्ता
0: है।
1: दिखाएगा।
0: शब्द ही सत्य है। आज की इस परिचर्चा में साहित्य से जुड़ना क्यों ज़रूरी है, बहुत ही बहुमूल्य विचार श्री तरसेम गुजराल जी ने दिए, और प्रोफेसर राजेंद्र टोकी ने भी अपने अनुभवों से बहुत सुंदर यहाँ पर श्रोताओं से ज्ञान के बिंदु साझे किए हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत
1: आपका भी
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: आपका भी
1: सुरेश
0: धन्यवाद।
1: जी।
0: धन्यवाद।
1: परिमल के आज के इस अंक में आप सुन रहे थे एक परिचर्चा, साहित्य के साथ जुड़ना क्यों जरूरी। इस परिचर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर सुरेश नायक, डॉक्टर तरसेम गुजराल व प्रोफेसर राजेंद्र तोकी। इसी के साथ आज का परिमल कार्यक्रम समाप्त हुआ। पेशकश सोहन कुमार।

है आधारा। भगत नामदेव जी फरमाउंदे ने कि मेरा सहारा हे अकाल पुरख तेरा नाम है। जिवें दृष्टिहीन व्यक्ति लई डंगोरी आसरा हुंदी है, इसे तरह मेरी जिंद दा आसरा आप जी दा परापूरबला नाम है। ताही तां श्री गुरु अमरदास जी पैरों राग विच उचारित शब्द विच नाम दी प्राप्ति गुरु राही दसते हुए नाम नू इच्छा पूरक दसते ने। मन मेरे राम नाम आधार, गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावण हार। इस शब्द का गायन कीता है बीबी अजीत कौर होरा ने।

0: मन मेरे राम नाम आधार, गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावण हार। इस शब्द का गायन कीता सी बीबी अजीत कौर होरा ने। नाम तो बिना होर सब आसरे व्यर्थ हन। इस करके चौथे पातशाह नाम जपण वालियां नूं वडभागी बयान करदे होए मनुखता नूं नाम जपण दी हिदायत करदे ने। सुनदे हां डॉक्टर जसबीर सिंह साबर होरां पासों वार्ता। नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर ना कोई, वड्डा भाग गुरमुख हर लैना। सुनदे हां डॉक्टर जसबीर सिंह साबर होरां पासों वार्ता। नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर ना कोई, वड्डा भाग गुरमुख हर लैना।
1: विचार अधीन पंक्ति गुरु की नगरी अनूप रामदासपुर के सिरजक श्री गुरु रामदास साहब जी के मुखों उच्चारण की हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 366 उपर अंकित की प्राप्त होंगी है। ये पंक्ति गंभीरता नाल ठीक प्रसंग च विचारन ते बहुत ही वडमुले विज्ञानक तत्थ साढ़े सन्मुख प्रगट होंदे हन। श्री गुरु रामदास जी की बाणी की वड्डी वड्याई ते अचरज शोभा इस तत्थ तो प्रगट होंदी है कि वह मानव जीवन के हर पक्ष नूं अध्यात्मक दृष्टि के नाल नाल समाजिक पक्षों भी एक सार वेखण परखण उपरंत अपनी विचारधारा नूं मानव जीवन नूं सवारन शिंगारन अते सच्चे मार्ग का पांधी बनन लई उभारते हैं। इहो कारण है कि वह गुरु नानक पातशाह के सिरजे प्रमुख सिद्धांतों विचों किरत करो नाम जपो अते वंड छको नूं एक दूजे के पूरक मन के समरूपता दिंदियां प्रचार दे ते प्रसार दे हन। गुरु साहब वल्लों गुरु की नगरी अनूप रामदासपुर नूं वसाउण लई 52 मार किताकारां नूं लिया के वसाउणा अते उन्हां किताकारां दी अपने कारोबार लई हर लोड़ींदी मदद करदियां उन्हां दी मानसिकता नूं नाम सिमरन नाल जोड़ना अते वंड छकण दी भावना पैदा करना इस तत्थ दा अमली रूप साढ़े सन्मुख प्रगट हुंदा है। दरअसल गुरमत दे प्रमुख सिद्धांतों विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बाणीकारां ने सा सा सिमरो गोबिंद अते मिठत नीवी नानका दे अंतर्गत नाम सिमरन अते होमै अथवा हंकार नूं त्याग के अपनी सोच विच निम्रता धारण करन ते सब तों वधेरे बल दित्ता है। गुरु अर्जन देव जी तां नाम जपण दे इस संदर्भ विच इत्थों तक आखदे हन कि जिस नीच को ना जानै नाम जपत ਉਹ ਚੌਂ ਘੁੰਟ ਮੰਨੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਸੋਹਣ ਚਵਾ।

हर पगतन को नाम आधार, संती जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई परवान, नानक दास ताके कुर्बान। इस शब्द गायन कीता सी भाई बलविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के

0: ये आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीए दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दाए जलंधर केंद्रे तुसी साडे प्रोग्राम वेव ऐप राही भी सुन सकते हो। आओ हुण तुहानू दस दिए अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

प्रोग्राम वगदे पाणी कहानी सुनोगे अज 7:45 ते बंद दरवाजा कहानीकार भूपिंदर सिंह मान उस तो बाद चंद गजला फरमाओगे।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਗਾਨ ਵੇਲਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा।
3: हाँ जी।
4: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां कारा जावांगे। हाँ
3: क्यों? पर मैं
4: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
3: इन्ने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तां बेटा जेल जावेगा।
3: जेल तां तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
4: ओए,
3: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
5: हेलो मम्मा।
3: हाय।
6: आरबीआई कहिंदा है
3: जानकार बनो, सुचेत रहो।
0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਗਾਨ।

0: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: श्री चौहान ने इस गल ते भी जोर दिता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट नाल निजिठण लई कई मुख पहलकदमियां कीतियां ने। उन्होंने कहा कि देश विच नवियाणियों ऊर्जा समर्था विच अहम वाधा होया। मंत्री ने चुगिरदे दी रख्या ते संभाल लई एक पेड़ मां के नाम मुहिम अते मिशन लाइफ वर्गियां पहलकदमियां दा भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2070 तक कार्बन निकासी खत्म करन दा टीचा रख्या है। पंजाब के राजपाल ते गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के चांसलर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सिक्ख्या का असल उद्देश सिर्फ रुजगार प्राप्त करना नहीं सगों अजिहे जिम्मेवार संवेदनशील नैतिक नागरिक तैयार करना हुंदा है जो समाज ते राष्ट्र दे विकास विच सरगर्म योगदान पाउण। राजपाल ने अज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की 51वीं कॉन्वोकेशन विच 456 विद्यार्थियों नूं डिग्रियां प्रदान करन समय आपने संबोधन दौरान एक गल कही। डिग्रियां ते तमगे प्राप्त करन वालियां च 3 विद्यार्थियों नूं चांसलर मैडल, 35 होनहार विद्यार्थियों नूं मेमोरियल मैडल, 82 खोज विद्यार्थियों नूं PhD अते 336 विद्यार्थियों नूं ग्रैजुएट ते पोस्ट ग्रैजुएट डिग्रियां प्रदान कीतियां गईयां। इस मौके श्री कटारिया ने कहा,
2: चांसलर मैडल 3 लोगों ने प्राप्त किया, 35 लोगों को आपने मेरिट मॉडल मेडल से सम्मानित किया और ये सौभाग्य है कि 82 स्टूडेंट ने PhD प्राप्त की जिनको डिग्री आपने पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ये सब मिलाकर 456 बच्चों को यहाँ बुलाकर डिग्री दी। इसके लिए आप सबका भी धैर्य का धन्यवाद। सच में आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे इसी विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने USA में जाकर के अपनी शिक्षा का और यहाँ की शिक्षा का जो परचम लहराया है, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए वास्तव में जसप्रीत सिंह जी आपका तो बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ अध्ययन करके किस प्रकार से USA में भी अच्छे लॉयर के रूप में स्थापित हुए हैं, ये क्रेडिट आपको तो है ही है, लेकिन इस विश्वविद्यालय को भी ये क्रेडिट जाती है।
1: उन्होंने अकादमिक सिक्ख्या पूरी करन उपरंत समाज विच कदम रखण जा रहे विद्यार्थियों नूं कहा कि यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं सगों उच्च सिक्ख्या खोज ते कदरां कीमतां दा एक चानण मुनारा है जिसने देश अते दुनिया नूं अणगिणत प्रतिभावां दित्तियां ने। इस यादगार मौके पंजाब के राजपाल श्री कटारिया अते वाइस चांसलर प्रोफेसर करमजीत सिंह ने अमरीका के न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध अटॉर्नी एट लॉ जसप्रीत सिंह नूं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वल्लों उन्हां दीआं शानदार प्राप्तियां अते देश के अकादमिक विकास विच अहम योगदान पाउण सदका ऑनर्स काजा डिग्री नाल सन्मानित किया। इस मौके पंजाब के उचेरी सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस अते होर पतवंतियां तो इलावा मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत सिंह औजला, मैंबर पार्लीमेंट राजकुमार चब्बेवाल ते होरनां ने विशेष शमूलियत कीती। पंजाब च वोटर सूचियां दी चल रही विशेष गहन सोध SIR प्रक्रिया दे हिस्से वजों सूबे भर दे वोट केंद्रां ते लाए गए दूर ऊर्जा विशेष कैंपां दौरान 30 लाख तों वध वोटरां ने अपने गणना फार्म EF भरे अते जमा करवाए। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी आनंदिता मित्रा ने दस्सिया कि अज अते बीते कल ए कैंप सवेरे 8 बजे तो दोपहर बाद 3 बजे तक सूबे भर दे सारे वोट केंद्रां ते लाए गए। वोटरां ने कैंपां दौरान अपने भरे हुए फार्म बूथ पद्धर ते अधिकारियां BLO स्कूल जमा करवाए। श्रीमती मित्रा ने दस्सिया कि घर घर जाके गणना फार्म इकट्ठे करन दी प्रक्रिया अजे भी जारी है ते 24 जुलाई तक जारी रहेगी। उन्हां अगे दस्सिया कि पिछले 18 दिनां विच 1,30,00,000 तों वध वोटरां ने अपने गणना फार्म जमा करवा दित्ते ने। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਏ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਏ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਏ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੋਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੀਬ 150 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ

पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। हे मां धरती, तेरी महानता की व्याख्या असी कदे नहीं कर सकते। सदियां तो पूरी कायनात विच विचरण वाले जीवां दे लालण पालण की जिम्मेदारी का बोझ तू ही अपने मोढ़ियां ते चक्या होया है। हे मेरी मां, पूरी मनुखता का जीवन ये बनस्पति, ये पहाड़, आसमान, समुद्रां विच पाणियां दीआं छल्लां, पूरे ब्रह्मांड विच जिंदगी का संगीत सब तेरा ही गुणगान है। हे जीवन दात्री मातरा, तेरा दिता होया अन्न खा के ही ता मनुख पुलाड़ नू जितन दे मनसूबे बना रहा है। तेरा दिता पानी पी के ही ता जीवन विच रवानगी आउंदी है। तेरी आबो हवा विच साह लैके ही ता चन्न तारिया नू छूण दी इच्छा हो गई है। ए कायनात, ए पूरी लुकाई तेरा ऋण कदे भी नहीं चुका सकती। असी रल के तेरा वंदन करते हैं। पूरी मनुखता दा सत्कार स्वीकार करो मां, स्वीकार करो।

0: इतनी खूबसूरत रोशनी, ओ मेरिया था अक्खा ही चुंधे आ गई ने। सुनहरी किरणा विच्चों छम छम दी आवाज नाल इधर नू बती आ रही, दिल नू अश्चरज कर देन वाली आभा, इता कोई देवी लगती है। किन्ना दिल टुंबमा है सास, हवावा विच संगीती आमद हो गई है। ए दरखत बनस्पति जिमें नृत्य कर रही होवे, हर पासे चंदन दी खुशबू, सरू दे रुखां दा इस तरह झूमना। हे देवी, तुहाडी आमद ने ता पूरे वातावरण दी मुहारी बदल दित्ती है। कौन तुसी देवी जिन्हां दे पैरां दी छो लैण दे लई ये बदल भी उमड़ के आ रहे ने।
1: मैनू आज भी याद है मेरे बच्चियां दे ओ हासे, उन्हां दा

0: हजारा सालां तो लगातार बिना रुके बिना थके मैं अपनी राह ते चलदी जा रही हूं। मैं उदों वी सी जद तुसी नहीं सी इत्थे, मैं तद तक रवांगी जद तुसी नहीं होवोगे। मैं चलदी रही हां ते चलदी रहांगी, पर हुण लगदा है कि मैं थक रही हां, बीमार हो रही हां, कमजोर होण लग पई हां। रसायनिक खादा दी दुरवरतों नाल, कीटनाशक दे वधेरे इस्तेमाल नाल, पानी हवा वातावरण जहरीला होई जा रहा है, पौष्टिक तत्व नष्ट हो रहे ने। मेरे बच्चियां नूं ते अंदाजा भी नहीं कि मिट्टी विच जहरा पर पर के किन्ना वड्डा गुनाह करी जा रहे ने।
1: अपनियां तों वड्डे हो के वरत रहे तुसी केड़ियां अकलां, तहस नहस सब हो

0: मेरे बच्चे भुल गए ने अपने पुरखियां नूं, जिन्हां दा जीवन ही कुदरती खेती नूं समर्पित सी, ते ओह किन्नी सुकून भरी जिंदगी जीउंदे रहे। इन्ना ही नहीं, ओह तां मेरे रख रखा दा वी किन्ना ध्यान रखदे सी। जिवें रात बराते मां बाप नूं तकलीफ होवे तां तुसीं पिठ मोड़ के नहीं सौंदे, उन्हां दी तिमारदारी करदे हो। उसे तरह तुहाडे पुरखे मेरी सेह संभाल विच जरा जिन्ना भी वसा नहीं सिखांदे। ओ सन मेरे रखवाले, मां धरती दे रखवाले, ते अज दे दौर विच जिवें तुहाडे बच्चे तुहानू परंपरावां संस्कृति भुलदे जा रहे ने, ते तुसी भी अपनी मसरूफियत विच उन्हां नू पूरा वक्त नहीं दे पा रहे। इस प्रक्रिया दे चलदे होए ओ दिन दूर नहीं जदों सब अपनियां जड़ां तो टुट जाणगे। इस बेटंगी जीवन शैली विच ना तुहानू अगली पीढ़ी दा ख्याल है, ते ना मेरा। मंगिया की है मैं तुहाडे कोलों, हमेशा अपना सीना पाड़ के जरूरत तो ज्यादा दिता है, तुसी मेरे ते क्यों जुलम करी जा रहे हो? पता नहीं लगदा कारखान्या दा जहरी पानी मेरे हिकड़ू कैंसर करी जा रहा है, प्लास्टिक सिलिकॉन दा मलबा मेरे समुंदर दे पानी ते उस दे जीवाणु दूषित करी जा रहा है।
1: रेहां ते स्प्रेयां करके दुध विच कोली जहर मनुखा, आरियां ते कुहाड़ियां बेच के सासूत ले पौधियां रुखा, गंदला करता वा

मिट्टी दी उपजाऊ शक्ति अपने आप वध जाएगी। मैं तुहाडे सब दी मां हां, तुहाडा पोषण करन आई हां। करोड़ा वरियां तो तुहाडे साहां नाल मेरा नाता है, तुहाडा जीवन मैं ही हां। जाए कह लो कि मेरे तो बगैर तुहाडा जीवन संभव नहीं। मेरे किसान पुत्रा ने अन्नदाता बन के मेरा साथ दिता है। दिन रात खून पसीना एक करके हर एक दे मुंह तक रोटी पहुंचाई है। सुनो मेरे बच्चों, जद भी तुसी मैनू अपने मत्थे ते लगा के इज्जत दिती है, उदो मैं चारों पासे हरियावल बन के फैल जांदी हां। मैं खुश, सारा जग खुश। मेरे थक्कण नाल, बीमार हो जान नाल, बंजर हो जान नाल किसे एक देश, एक राष्ट्र, एक जमात, एक धर्म दा नुकसान नहीं, बल्कि पूरे विश्व दी मानव जात दा नुकसान है। मुल्कां दियां सरहदां, पाशावां, परंपरावां, संस्कृति, रहन सहन अलग अलग हो सकदा है, पर धरती दे नाल असी सारे बज्जे होए। धरती दी यह कड़ी टुट गई ता सब बिखर जाना है, खत्म हो जाना है। वादा करो मेरे नाल, वादा करो मेरे नाल के असी इस कड़ी नू कदे टुटन नहीं दवांगे, कदे टुटन नहीं दवांगे। एक मिक होके रहांगे, एक मिक होके रहांगे।

0: प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: श्री चौहान ने इस कालते भी जोर देता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट न लजटन लई कई मुख पहल कदमियां कीतियां ने। उन्हें कहा कि देश विच नवियाउणे ऊर्जा समर्था विच अहम वाधा होया है। मंत्री ने चुगिरदे दी रख्या ते संभाल लई एक पेड़ मां के नाम मुहिम अते मिशन लाइफ वर्गियां पहल कदमियां दा भी जिक्र कीता। श्री चौहान ने कहा कि भारत ने 2070 तक कार्बन निकासी खत्म करन दा टीचा रख्या है। केंद्रीय व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल कल तो 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम अते फिनलैंड दा दौरा करनगे। ओह इस दौरे दौरान भारतीय सनत दे कुछ पदरी वफद दी अगवाई करनगे। व्यापार ते सनत मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरे दा उद्देश व्यापार, निवेश, तकनालोजी, नवीनता ते निरंतर रहनयोग विकास ते ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप नाल भारत दी आर्थिक भाईवाली नूं होर मजबूत करना है। अफगानिस्तान के खेतीबाड़ी, सिंचाई और पशुधन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमर ने आज भारत का अपना चेतना दौरा समाप्त किया। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया है कि उन्होंने

आशा भोसले ते किशोर कुमार की आवाज़ से सुन रहे सी खूबसूरत गीत। अगली आवाज़ सुनते हैं अरिजीत सिंह ते नूरा की आवाज़ के गीत के बोल ने सही होनी।

0: हुणे तो कुछ ही पला बात सुनोगे दिल्ली केंद्र तो समाचार संध्या 9 बजे न्यूज़ एट 9 9:15 बजे स्पॉटलाइट 9:30 बजे नेशनल प्रो ऑफ फीचर्स 10 बजे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कलाकार होंगे कुमार मरधूर
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जोरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता उत्पीड़न धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक

0: निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान

16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित

कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सतना और ग्वालियर घराने की गहरी समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मंडोर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मंडोर ख्याल, ठुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मंडोर, अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। कुमार मंडोर स्टैंड्स आउट एज अ गिफ्टेड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। हिज ग्राउंडिंग इन द किराना एंड ग्वालियर घरानास अलॉन्ग विद ट्रेनिंग अंडर हिज फादर पंडित सोमनाथ मंडोर has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur, Atrauli and other gharanas, built on deep riyaz and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashwani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मंडोर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
1: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath. Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Rag Chaya Nat, Vilambit Jhumra, Inayatahu, Drut Teen Tal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drut Teen Tal.

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डोर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मल्डोर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मल्डूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Mardur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारी

0: कार्यों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बिल्कुल जी, इस गल च दो राय नहीं है कि वसदे घर ही चिट्ठियां आंदियां, पर एक गल मननी पेगी, अजकल चिट्ठियां बहुत घट गईयां, ना बराबरी हो गई, टेलीफोन भी घट गया क्योंकि मोबाइल ने सबनों खा लिया, कैमरे घट गए, लैंडलाइन फोन घट गए, चिट्ठियां घट गईयां, बहुत कुछ घट गया, पर फिर भी जो मज़ा जो गलबात चिट्ठी पढ़ के आंदा वो बिल्कुल बिल्कुल ओहदा कोई मुकाबला नहीं है। और कुलदीप मानिक साहब ने बहुत प्यारा गीत, बहुत वधिया गीत सुनाया सानू जी। लो जी, गलबात करते रहेंगे, इस तरह प्रोग्राम नू जारी रखते हैं, तो हुण आपां अपने अगले कॉलर नाल गलबात करते हैं। हैलो,
1: नमस्कार शर्मा जी।
0: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं अमित बोल रहा जी,
1: महेश गर्ग मंडी हरजी राम मलोड तो जी।
0: हाँ जी महेश जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम शुरुआत में, की हाल चाल ने?
1: धन्यवाद जी।
0: तो अज केड़ा गीत सुनाओगे?
1: नसीबत दा सुनाओ जी।
0: ठीक है सर, कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा जी, तुहानू गलबात करके बहुत चंगा लग्या, और उम्मीद करते हैं सानू तुसी इसे तरह कॉल करते रहोगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनने लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुहाडी पसंद का गीत नसीबो की आवाज़ तक पहुँच रहा जी।

0: बिल्कुल जी, बहुत प्यारा गीत गुरदास मान उनकी आवाज़ में सुनिए, और बहुत ही प्यारा मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करिए, हक की रोटी खाइए, वंड चकिए और किरत करिए। जिन्हें यह गल्लां मान लिया उन तो कोई दुख तंग कर सकता ही नहीं, है ना जी। चलो प्रोग्राम जारी रखते हुए आप हम अगले कॉलर के नाल गलबात करते हैं, तो देखते हैं किस गीत की फरमाइश लैके हाजिर हुए हैं। हैलो,
1: अमित जी सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं, किस जगह तो?
1: देश राज ड्राइवर, तहसील टोहाना, जिला फतेहबाद, हरियाणा।

अगला व्हाट्सएप मैसेज जिहड़ा असीं प्रोग्राम शामिल करन जा रहे हां जी, सानूं भेज रहे ने तालुका पंडरपुर तों जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी ते बहुत सारे साथी यह सुनना चाहते हैं कोई भी पंजाबी गीत। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजन दे लई। जनकपुरी सहारनपुर तो सानू मैसेज भेजे ने जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी डिकोस्ट्रा, पर्ल डिकोस्ट्रा तो विल्स डिकोस्ट्रा, इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सौगात विच। और इन्होंने भी किसी खास गीत की फरमायश नहीं भेजी है जी, पर इन्होंने हाजिर लवाई है तो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों का मैसेज भेजन दे लई। और लो जी अगला मैसेज सानू मिलिया जी मालवा रेडियो संघ पिंड हिंगड़ी जिला रतला एमपी तो जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू भाई, युवराज ते शिवांकी यह सुनना चाहते ने नूरा सिस्टर्स का कोई भी पंजाबी गीत। प्रोग्राम की रली मिली फरमायश से आओ सुनते हैं जी पंजाबी गीत।

प्रोग्राम दी अगली पेशकश ग्रिप्पी ग्रेवाल ते शिप्रा गोयल दा गाया हुआ एक युगल पंजाबी गीत। आओ जी आनंद लैंदे इस गीत दा।

तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। तुर की बाणी रब्बी सुनेहा है, इस बाणी नू विचार के कोई भी प्राणी उस करते नाल अपेदता प्राप्त कर सकता है। प्रभु नाल नेड़ता या एकमिकता रखण वाले गुरसिखां नू संत कह के संबोधन किया जाता है, जो होरना प्राणियों नू नाम जपण की विधि द्वारा अनहद बाणी की कुंजी सौंप दिंदे हन। पर गुरबाणी विच जिथे एक वचन रूप विच संत पद आया है, तो उस तो भाव गुरु है। बाणी के बोहित पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी राग कानड़ा विच संत प्रभु नाल मिलाप दी तीबर तांग रखदे हुए प्रभु प्यारे संत जना नाल मिलाप बारे बेनती करदे हन। साजना संत आओ मेरा, आनदा गुण गाए मंगल, कसमला मिट जाहे परेरा। इस शब्द का राग कानड़ा विच ही गायन कीता है भाई महेंद्र सिंह होरा ने।

साजना संत आओ मेरे, आनदा गुन गाए मंगल, कसमला मिट जाहे परेरा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई मोहिंदर सिंह होरा ने। गुरबाणी विच किसे भी चीज़ दी तीबरता वधाउण वास्ते राड़ा अक्षर उस शब्द दे पिछेतर लग जांदा है। जिवें लोड़ींदा शब्द दी तीबरता वधाउण वास्ते राड़ा अक्षर पिछेतर लगा के शब्द लोड़ींदड़ा आया है। जीव रूपी इस्त्री अकाल पुरख नूं कई नावां नाल संबोधन करती है, जिवें सज्जण, साजन, मित्र, सखा आदि। जतसरी राग विच पंचम गुरदेव सर्ब कला समर्थ प्रभु दी तीबर लोचा वास्ते बेनती करदे हन। सुनदे हां डॉक्टर हरपिंदरजीत कौर होरां पासों वार्ता लोड़ींदड़।

0: साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसह बसेरा।
1: यह पवित्र फुरमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 700 उपर श्री गुरु अर्जन साहिब जी का उचारिया होया राग जैतसरी विच सुशोभित है। इस रहाओ दी तुक विच गुरु पातशाह जी उपदेश करते हैं कि जेकर जग्यासो साधक साजन प्रभु नू मिलन दी लोचा रखता है तो प्रभु प्यारे दी सिफत सलाह दे सोहने गीत गाउण दा गुण उस नू तारण करना होवेगा, क्योंकि मेरे साजन मित्र दी शोभा ते वड्याई ऐसी है कि वह हर एक हिरदे विच वस्या होया है अते हर कोई उस नू मिलन लई तांग रहा है। शब्द दी पहली तुक लोड़िंदड़ा साजन मेरा विच गुरु साहिब जी ने साजन प्रभु दे मिलाप लई तीबर तड़प प्रगटाई है। ये ओह तड़प है जो गुरु साहिब जी ने अपने गुरु पिता जी दे दर्शना लई दर्शाई सी। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा ना उतरे सांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारी जियो। लोड़िंदड़ा साजन ओ मित्र प्यारा प्रभु है जिस दे स्वरूप नू गुरु नानक साहिब जी ने आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच आख्या है। ओ साजन केवल एक है, सदा सदा है, अनादि शब्द है, सृष्टि दा सिरजनहार ते उस विच व्यापक है। उस नू ना किसे दा डर है अते ना ही किसे नाल वैर। ओ काल रहत है, समय दा उस उते कोई असर नहीं, ओ जन्म मरण विच नहीं आउंदा, अपने आप तो उस दा प्रकाश होया है। गुरु ग्रंथ साहिब विच अकाल पुरख दे गुणा नू सर्व व्यापक अते अपरंपर शब्दां राहीं बयानिया है। सर्व व्यापक होण करके ओ सब दे नेड़े है अते मन दियां हद्दां तो परे होण करके अपरंपर है, निर्लेप है। वो निर्गुण भी है ते सरगुण भी, गुप्त भी है ते प्रगट भी, सूखम भी है ते स्थूल भी, अफुर भी है ते सफुर भी। वो अगम अगाद अगोचर होण दे नाल नाल दयालु कृपालु भगत वशल गोबिंद है। ऐसे अनंत गुणा दे भंडार साजन बारे गुरु साहिब जी फुरमाउंदे हन, तेरी गतमित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत दिखाई। गुरु पातशाह जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेरा साजन प्रभु ही सब जीव स्त्रियां दा मालक खसम है। इको कंत सबाइया जित्ती दर खड़िया, नानक कंते रतियां पूछे है बातड़िया। हाँ, सारियां जग्यासु जीव स्त्रियां उस केवल एक स्वामी दे दर उते इस नाल मिलाप दी आग्या मिलन दी संभावनावां विच खड़ियां हन। ये भी ध्यान योग है कि गुरबाणी विच किते भी सच्चार साजन दा इंद्रियां दी पकड़ विच आ जाण वाले स्थूल रूप दा जिक्र नहीं होया। जिन्हां अखां नाल प्रीतम साजन दिसदा ते अनुभव हुंदा है उस उचेरे ज्ञान दियां अनुभवी अखां होर ही हन। गुरफुरमान है, लोएन लोई डिठ प्यास न बुझै मूँ कणी, नानक से अखड़ियां बयान जिन्हें डिसंदो माँ पिरी। गुरु साहिब जी ने सच्चार साजन नूं कदे भी बौद्धिक विवाद दा विशा नहीं बनाया, सगों उन्हां दा साजन सचखंडी निरंकार है अते ओह भगती समर्पण अते डूंघे विश्वास राहीं अनुभव विच आउंदा है। हर जीव अपने आप नूं धर्म ज्ञान शर्म अते कर्मखंड राहीं नैतिक अते अध्यात्मक विकास दियां पौड़ियां चढ़दियां सचखंड दा वासी बना सकता है अते साजन दी हाजरी दा आनंद माण आनंदित हो सकता है। सचखंड कोई भौतिक खंड नहीं, सगों निरंकार साजन खुद सचखंड है। जिवें सूरज दी किरण दा चानण खिलरिया हुंदा है, तिवें हरेक हस्ती विच सर्वव्यापी हरी ताणे पेटे वांग रमिया होया है। ज्यों पसरी सूरज किरण जोत, त्यों घट घट रमैया ओत पोत। भावें साजन सब थाई मौजूद है, फिर भी उस दी सिफर सलाह दे गीत गा के ही उस तक रसाई हो सकती है। बाणी अनुसार रसीए साजन दी सिफर सलाह केवल नाम राहें ही हो सकती है। नाम जपन दा अर्थ है।

निकटवर्ती है। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयाड़ा मेरा साजनड़ा, जानियाड़ा हर जानियाड़ा, नैन अलोयाड़ा हर जानियाड़ा। इस शब्द का गायन किया भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानी अड़ा हर जानी अड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानी अड़ा। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

पाटो बेनत कहा जो गुरु नाम रिद में तरा सो जन्म मरण दो थे रहा जो गुरु गुरु अनिथ जपा दास पाट बेनत कहा जो गुरु नाम रिद में

0: गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाए उदत गुर गैर गंभीर बेंत हर नाम नहीर मन मृत लिवलाय पुन गुरु परम सरस करत कंचन परस मैं दुर्मत हिरत शब्द गुर त्याय अमृत परवा छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाय नाम निर्वाण निदान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाय गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाके सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गण तेरे ते तेज गुर बचन सुन कन रे हुन तेरे ते संत हित भक्त गुर गुर करे तेरे ओ प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तेरे नारदाद सनकाद हर गुरमुख तरह एक नाम लग तज हो रस अन रे दास बेनत कह दास बेनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे
1: श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सत युग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर धरियंग अलख रूप जी रखिया न जाई साधिक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरवा न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रहना थाप जोत जगतारी रहने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चहु जुग गुर सेवा कर फल रहियं बंदे जो चरण सरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखन परनन सतगुर गुरु सेव

नाम कहे सत नंबर स्वामी सत में अच्छा साथ रहे सबको सत समय में डिग कहे रहे भरपूर राम नाम देवा में सुनाय ले प्रश जय नानक तो मखन त्रिपाय जज में जो छली चंद्रावल कान के संजाद में भया कर जात गोपीला बिंद्रा बन में रंग किया कल में बेद थर बन हुआ नौ खुदाई अलहो पया नील बसले कपड़े पहरे

बलजी वाही गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फातह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समय का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हरि गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर नौन दिया वैताई सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहब जादिया चालिया मुक्तिया हाथिया जापिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चालाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘ

0: दया कृपा संतोख सूरत जत गंडी सत वट हिजने उजी काही ता भांडे कत नाहे तुटे ना मल गै नाहे दिले ना जाए तन समान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुलना या बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पया बेतगा गया महला पहला
1: लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गा लठ गया पे नामिया रात न जिना तग पहु करती है बामन वटे आए कोई बकरा रिण खाया सबको आखे पाए हो

साहिब हुए दयाल, कृपा करे ताई कार कराईसी, सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाईसी। हुक्म न होवे प्रमाण तो कसम कम हल पाईसी, कसम पावे सो करे मनो जिन्या सो फल पाईसी, तां दरगह पैदा जायसी, तां दरगह।